0: Well, tracking the big breaking news coming in at this hour, where new details have emerged in the Kill Ketan plot. As per sources, Sia did not want to get married to Ketan. Sources suggest that Sia even told the cops that she was dating Chetan. Sources have even gone on to add that Ketan refused to call off the wedding despite Sia asking him to call off the wedding. Sources state that Sia claims that Ketan threatened her as well, and that she's even gone on to add that Chetan is now the latest claimed that Sia came up with the kill plot. So in the latest, you can see that Chetan, who was Sia's alleged boyfriend, has now come up and said that Sia came up with the kill plot. Sia, on the other hand, claims that the murder was entirely Chetan's plan. Important updates now stemming in the Pune murder case, where we're seeing a blame versus counter-blame, as Chetan has now gone on to blame Sia and Sia has pinned the blame on Chetan. Now, the important update here is the fact that Sia did not want to get married to Ketan and allegedly told him as well that she does not want to get married. But it was Ketan who threatened her when she said that she wants to call off the marriage. The latest update is coming in, and of course, the investigation is picking up pace in the case. We're understanding that the main accused in the case, Sia as well as Chetan, have come out and blamed each other for the murder plot. Now, let's bring you more updates coming in right now. Now, the Pune murder mystery continues to get murkier as Sia Goyal's parents want their daughter punished, while the alleged lover Chetan and Sia are now blaming one another. In a big twist in the case, sources have told NDTV that Sia claimed that Ketan had threatened her. Speaking to investigators, Sia reportedly claimed that she had expressed her unwillingness to marry Ketan Agarwal, but he threatened her using family influence. Meanwhile, Sia's parents said that their daughter was, if indeed found guilty, then she should be hanged to death. Sources even go on to say that during questioning, Chetan and Sia were found to be blaming one another over the murder plot and their decision to elope and get married.
1: वो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे थे मेरे बेटे से भी बढ़ के यानी मेरा केतन जी था जो भी दोषी निकले मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए
2: आप सिया की मम्मी हैं केतन को जाके अभी कुछ दिन हो गए हैं क्या आपको भी केतन को लेके सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है
3: दुख मुझे बहुत दुख है मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए
2: किसी ने भी
3: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है
2: एक्शन होना चाहिए सक्सेस सजा हाँ जी चाहे वो सीआई क्यों ना
3: हाँ जी जरूर
2: अच्छा दो विमान आपने बुक किए थे कि केतन के घर वालों ने बुक किए थे वो जयपुर या उदयपुर
4: मैंने बुक किए ना सामने वाले केतन के डैडी ने बुक किए किसी ने बुक नहीं किए विमान कोई बुक नहीं हुए सर बुकिंग होने वाली थी वो जुलाई महीने में होने वाली थी हम संजय निहाल ट्रेवल्स संजय अग्रवाल के संपर्क में थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम जो टिकट
2: चार्टर प्लेन 14 करोड़
4: नहीं सर नहीं चार्टर प्लेन का हमने कभी सोचा भी नहीं और मेरी ताकत नहीं कि मैं चार्टर प्लेन करूं मैं तो बस पुणे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बायकार लोगों को लेके जाने वाला था
2: पुणे से अहमदाबाद आप कैसे चार्टर प्लेन से जाने वाले
4: नहीं सर टिकट बुकिंग 20-20 टिकट मार मार के धीरे धीरे 20-20 टिकट बुकिंग करके
2: कितने लोग
4: 70 कपल्स टोटल 65-70 कपल्स यानी कि 130-140
2: लेकिन वो 14-15 करोड़ के दो बड़े चार्टर विमान बुक करके डेस्टिनेशन वेडिंग का जो एक जो न्यूज आ रही है
4: कुछ भी नहीं है ये सब फेक न्यूज है सर फेक न्यूज है

0: Let's now bring you through more updates coming in at this hour. Well, the UP police last evening registered an FIR in the Ram Mandir donation theft case, naming 8 accused along with other unknown people. So far, the police have taken 6 accused in the custody, including Lavkush Mishra, Ankalp Mishra and Avinash Shukla. This also includes Manish Yadav, Ram Shankar Mishra and other accused in the case. Now, the trial secretary, Champa Trials Close 8, Tinu Yadav, has also been named in the FIR and is currently absconding. NDTV managed to speak to him last evening, where he denied any knowledge of an FIR that has been registered against him. Meanwhile, the UP police have invoked charges like criminal conspiracy, breach of trust, dealing in stolen property and common intention against the accused. Despite this, Akhilesh Yadav has accused the probe of shielding the big fish, alleging that this is a cover-up under the pretext of an SIT probe.
1: Ayodhya, Ram Mandir mein, Chanda, Chadhava mein, चोरी और जो आभूषण गायब हुए थे उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बहुत गंभीर मामला है। राम मंदिर में आभूषणों की और चढ़ावा चोरी होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। उनको अपने मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
2: उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह मान लिया कि राम मंदिर चढ़ावा में हेराफेरी हुई है और इस संबंध में एक एफआईआर अयोध्या में दर्ज हुई। ये यकीनन करोड़ों राम भक्त और राम में आस्था रखने वालों की जीत है। हम उम्मीद करते हैं, समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि इसकी निष्पक्ष और ईमानदार जांच होगी। सिर्फ छोटे लोग ही पनिश नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
3: देखिए, कल पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाया 75 जिले में उत्तर प्रदेश के, कि राम जी के जो चढ़ावे की चोरी हुई है उसमें सरकार तत्काल मुकदमा दर्ज कराए। हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्रक दिया पूरे जिले में और उसी के तहत दबाव के तहत आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इन एफआईआर कराया, पर एफआईआर केवल खानापूर्ति के लिए की गई है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिनके पूरे अधीन वो काम कर रहा है राम मंदिर ट्रस्ट, नृपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं है उसमें, चंपत राय जो सारा माल चंपत कर गए उनका नाम नहीं है उसमें, गोपाल राव का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है एक वहाँ के कर्मचारी ने और वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं जो काम कर रहे थे कि हमसे 40% का कमीशन लिया जाता था। तो इससे साबित हो रहा है कि केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए एफआईआर कराई गई है।
0: Well, the FIR in the Ram Mandir theft row came at a time when even Vishwa Hindu Parishad demanded strong action in the case. From fast track court hearing to strong punishment for those guilty, listen in to Vishwa Hindu Parishad's international president Alok Kumar articulating his demands in the probe in conversation with our managing editor Padmija Joshi. Listen into the chat.
4: Do you think that till the time that this probe is taking place, Champat Raiji should step aside from his post?
5: I would not advise Champatji to do whatever. I have known him as a sincere person and he will take his own decisions in the matter whether he should stay or quit for the time of investigation.
4: But Alokji, I'm going to ask you very bluntly. Every single allegation that is being made now is directed at Champat Raiji. People are asking, how is it possible that when he was involved in the supervision of the counting, the people whose names are cropping up as suspects, all of them are in some way related to him. People like Tinu Yadav, people like Anil Mishra, all of them trace their relations to Champat Rai. Can a fair and free investigation take place till the time that he is still at the head of the trust?
5: I have already said that after an FIR is filed, Champatji will have to consider this aspect and he will take his own decision. We are not going to advise him.
4: Do you think that this has seriously cast a doubt on the functioning of the trust itself? Because today, people from across the country, politicians from across the country are saying that

0: संजय अग्रवाल के संपर्क में थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम जो टिकट
1: चार्टर प्लेन 14 करोड़
0: नहीं सर, नहीं चार्टर प्लेन का हमने कभी सोचा भी नहीं, और मेरी ताकत नहीं कि मैं चार्टर प्लेन करूं। मैं तो बस पूना से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बायकार लोगों को लेके जाने वाला था।
1: पूना से अहमदाबाद आप कैसे चार्टर प्लेन से जाने वाले?
0: नहीं सर, टिकट बुकिंग 20-20 टिकट मार के धीरे धीरे 20-20 टिकट बुकिंग करके।
1: कितने लोग?
0: 70 कपल्स टोटल, 65-70 कपल्स, यानी कि 130-140।
1: लेकिन वो 14-15 करोड़ के दो बड़े चार्टर विमान बुक करके डेस्टिनेशन वेडिंग का जो एक जो न्यूज आ रही है,
0: कुछ भी नहीं है, ये सब फेक न्यूज है सर, फेक न्यूज है।
2: Let's now bring you through more updates coming in at this hour. Well, the UP police last evening registered an FIR in the Ram Mandir donation theft case, naming 8 accused along with other unknown people. So far, the police have taken 6 accused in the custody, including Lavkush Mishra, Ankalp Mishra and Avinash Shukla. This also includes Manish Yadav, Ram Shankar Mishra and other accused in the case. Now, the trial secretary, Champa Trials Close 8, Tinu Yadav, has also been named in the FIR and is currently absconding. NDTV managed to speak to him last evening, where he denied any knowledge of an FIR that has been registered against him. Meanwhile, the UP police have invoked charges like criminal conspiracy, breach of trust, dealing in stolen property and common intention against the accused. Despite this, Akhilesh Yadav has accused the probe of shielding the big fish, alleging that this is a cover-up under the pretext of an SIT probe.
3: Ayodhya, Ram Mandir mein, Chanda, Chadhava mein, चोरी और जो आभूषण गायब हुए थे उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बहुत गंभीर मामला है। राम मंदिर में आभूषणों की और चढ़ावा चोरी होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। उनको अपने मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
4: उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने यह मान लिया कि राम मंदिर चढ़ावा में हेराफेरी हुई है और इस संबंध में एक एफआईआर अयोध्या में दर्ज हुई। ये यकीनन करोड़ों राम भक्त और राम में आस्था रखने वालों की जीत है। हम उम्मीद करते हैं, समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि इसकी निष्पक्ष और ईमानदार जांच होगी। सिर्फ छोटे लोग ही पनिश नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
5: देखिए, कल पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाया 75 जिले में उत्तर प्रदेश के, कि राम जी के जो चढ़ावे की चोरी हुई है उसमें सरकार तत्काल मुकदमा दर्ज कराए। हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्रक दिया पूरे जिले में, और उसी के तहत दबाव के तहत आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इन एफआईआर कराया। पर एफआईआर केवल खानापूर्ति के लिए की गई है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिनके पूरे अधीन वो काम कर रहा है राम मंदिर ट्रस्ट, नृपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं है उसमें, चंपत राय जो सारा माल चंपत कर गए उनका नाम नहीं है उसमें, गोपाल राव का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है एक वहाँ के कर्मचारी ने और वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे थे कि हमसे 40% का कमीशन लिया जाता था। तो इससे साबित हो रहा है कि केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए एफआईआर कराई गई है।
2: Well, the FIR in the Ram Mandir theft row came at a time when even Vishw Hindu Parishad demanded strong action in the case. From fast track court hearing to strong punishment for those guilty, listen in to Vishw Hindu Parishad's international president Alok Kumar articulating his demands in the probe in conversation with our managing editor Padmija Joshi. Listen into the chat.
6: Do you think that till the time that this probe is taking place, Champat Raiji should step aside from his post?
7: I would not advise Champatji to do whatever. I have known him as a sincere person, and he will take his own decisions in the matter whether he should stay or quit for the time of investigation.
6: But Alokji, I'm going to ask you very bluntly. Every single allegation that is being made now is directed at Champat Raiji. People are asking, how is it possible that when he was involved in the supervision

0: चढ़ावा में चोरी और जो आभूषण गायब हुए थे उसकी FIR दर्ज हो गई है। ये बहुत गंभीर मामला है। राम मंदिर में आभूषणों की और चढ़ावा चोरी होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। उनको अपने मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
1: उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये मान लिया कि राम मंदिर चढ़ावा में हेराफेरी हुई है और इस संबंध में एक FIR अयोध्या में दर्ज हुई। ये यकीनन करोड़ों राम भक्त और राम में आस्था रखने वालों की जीत है। हम उम्मीद करते हैं, समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि इसकी निष्पक्ष और ईमानदार जांच होगी। सिर्फ छोटे लोग ही पनिश नहीं किए जाएंगे बल्कि इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
2: देखिए, कल पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाया 75 जिले में उत्तर प्रदेश के, कि राम जी के जो चढ़ावे की चोरी हुई है उसमें सरकार तत्काल मुकदमा दर्ज कराए। हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्रक दिया पूरे जिले में और उसी के तहत दबाव के तहत आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इन FIR कराया। पर FIR केवल खानापूर्ति के लिए की गई है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिनके पूरे अधीन वो काम कर रहा है राम मंदिर ट्रस्ट, नृपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं है उसमें, चंपत राय जो सारा माल चंपत कर गए उनका नाम नहीं है उसमें, गोपाल राव का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है एक वहाँ के कर्मचारी ने और वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं जो काम कर रहे थे कि हमसे 40% का कमीशन लिया जाता था। तो इससे साबित हो रहा है कि केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए FIR कराई गई है।
3: Let's shift our focus to some breaking updates. Jagman Samre has released a video following Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's press conference. In fact, he has stated that the claim regarding the masks is completely false and accused the Chief Minister of lying. Challenging the Chief Minister, he asked him to reveal where the masks were procured from and to whom the payment was made. He further challenged him to produce even a single person who he had filmed wearing a mask.
4: ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ CM ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ।
3: Samra, they're accusing the chief minister of misleading the public and challenging him to provide proof. So challenging the chief minister, Samra has asked him to reveal where the masks were procured from and to whom the payment was made. In fact, after the chief minister's press conference, now Jagman Samra releasing a video rejecting allegations that a prosthetic mask resembling Bhagwant Mann was used. He called the mask theory false and accused the chief minister of misleading public. Samra challenged Mann to disclose where the masks were obtained, who paid for them, and to identify even one person who was allegedly filmed wearing such a mask. The video was presented as a direct rebuttal to chief minister's claims. Let's go straight across to Gurpreet on this. Gurpreet, hours after Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's press conference, now Canada-based NRI Jagman Samra hitting back with a video statement denying allegations that a prosthetic mask resembling the CM was used in the controversial footage.
5: Well, yes, we have seen NRI Jagman Samra. He has already released a statement, a video statement, in which he has claimed that if such type of allegation which has been leveled by Punjab Chief Minister, there is any truth, there is a need to probe all these allegations. He denied that he did not carry any mask of the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Singh Mann, and if he has given that mask to somebody, why there is no

0: deep probe into these allegations which has been leveled against him. We have seen a few days back when this video was in public domain. After that, there was a multiple turns and twists in Punjab political scenario, and specifically all the opposition leaders, they have been demanding immediately resignation of Punjab Chief Minister on this controversial video. We have seen the Chief Minister of Punjab, he has made it very clear. He brought a few videos before media showing that how this mask was used for creating this fake video, and after that he made it very clear this mask was used by Jagman Samra. And he has also shown his video. But immediately after the press conference, we have seen Jagman Samra, NRI, has given statement, and he has demanded high-level probe into these allegations which has been leveled against him. So let's see that what type of action the Punjab police is going to take, because yesterday the Punjab Chief Minister has already made it very clear, saying that all videos are going to be given to the Punjab police so that proper investigation could be taken place, and why this forced and fake video has been circulated by this NRI. And he has also claimed, we are trying to get back Jagman Samra from Canada to Punjab through Interpol. So we have to wait and watch how the investigation will be unfolded in coming days. Back to studio.
1: All right, so the Chief Minister there continuing to maintain that footage was part of a conspiracy, and that the individual wearing that mask resembling his face was used to create the impression that he was involved. Investigations may follow. Thank you for those details, Gurpreet. The Pune murder mystery continues to get murkier as Sia Goyal's parents want their daughter punished, while alleged lover Chetan and Sia are now blaming each other in a big twist to the case. Sources told NDTV that Sia claimed Chetan had threatened her. Speaking to investigators, Sia reportedly claimed she had expressed her unwillingness to marry him, but Chetan had threatened her using his family influence, saying she couldn't get away. These are her claims. Meanwhile, Sia's parents said if their daughter was indeed found guilty, she should be hanged to death. Sources also telling NDTV that during questioning, Chetan and Sia were found blaming each other over the murder plot and their decision to elope and get married.
2: वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे से भी बढ़के यानी मेरा केतन जी था। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
3: केतन अग्रवाल केस में आज पहली बार सिया के माँबाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी, ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं। मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, लेकिन एक सवाल मैं वापस, या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे। पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है। आपको क्या लगता है इसमें जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ, या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
4: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
3: सख्त से सख्त मतलब क्या?
4: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
3: सजा। कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
4: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूंगा।
3: आप होशो हवास में?
4: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
3: पूजा जी, आपको क्या लगता है?
2: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए।
3: नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी बेटी,
2: आरोपी मेरी, अगर आपकी बेटी हो, तो
3: कल अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
2: ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो। आप एक माँ बोल रही है ये,
3: ठीक है। आप सिया की मम्मी, कीर्तन को जाके अभी कुछ दिन हो गए, क्या आपको भी केतन को लेके सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है?
2: दुख मुझे बहुत दुख है, मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को, आज मेरे बेटा साहिब भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया, मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
3: किसी ने भी,
2: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है,
3: एक्शन होना चाहिए सबसे सजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: Literally

0: problem in the temple donation or there is no problem?
1: No, no, no, Padmaja. I am no one to accept.
0: ऐसे भक्त हैं जो कि आके कह रहे हैं, एक सिंधी समाज है, वो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों का चांदी चढ़ाई थी. कहाँ पर है वो चांदी?
2: सवाल बहुत अच्छा है. इस देश में या पूरी दुनिया में कौन कह रहा है राम मंदिर की चोरी होना अच्छा काम हुआ?
0: इंडिविजुअल विद वेरी लिटिल एक्सपीरियंस वॉज अपॉइंटेड एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट.
3: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right, and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
6: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
6: France.
4: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: answers do those devotees deserve today? This afternoon, we examine the investigation, the questions surrounding the temple's donation system, and what this means for one of the country's most revered places of worship. I'm Vedika Sood, this is Breaking Ground, and these are the headlines we're tracking at this hour. The Pune murder probe has taken a dramatic turn. Accused Sia Goel and her alleged lover Chetan Chaudhary have now turned on each other. According to sources, Sia has claimed she told fiancé Ketan Agarwal she did not want to marry him, but he refused to call off the wedding. Eight accused of siphoning donations at the Ram Mandir donation venue arrested. Opposition alleges cover-up, says SIT probe is just not enough. After the row over the emergency chapter in NCERT books, now NCERT praises Election Commission for free and fair polls. New textbooks back electoral process as unparalleled. Leader of opposition Rahul Gandhi's international visit has sparked a row, with the BJP questioning the visits and the funding for them. The Congress has responded, calling the leader of opposition an international leader who receives frequent invites. After Chief Minister Bhagwant Mann alleged that a mask was used to create fake footage and named Canada-based NRI Jagman Samra, Samra has hit back, calls allegations completely false, dares Punjab government to produce evidence. The row over the Biradi project flares up as Union Minister H.D. Kumaraswamy writes to the Karnataka Chief Minister requesting cooperation to meet farmers' needs. At least 235 people were killed, with thousands more injured after two of the strongest quakes in over a century hit Venezuela. Rescuers race to find quake victims as global relief efforts gain space. The Pune murder mystery continues to get murkier as Sia Goel's parents want their daughter punished, while alleged lover Chetan and Sia are now blaming each other. And that's the latest we have from the investigation. In a big twist in the case, sources have told NDTV that Sia has claimed Ketan had threatened her. Speaking to investigators, Sia reportedly claimed she had expressed her unwillingness to marry him, but Ketan had threatened her using his family influence, saying she couldn't get away. These are her claims. Meanwhile, Sia's parents have said if their daughter was indeed found guilty, she should be hanged. Sources also told NDTV that during questioning, Chetan and Sia were found blaming each other over the murder plot and their decision to elope and get married.
1: वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे, मेरे बेटे से भी बढ़ के, यानी मेरा केतन जी था। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
2: केतन अग्रवाल केस में आज पहली बार सिया के माँ बाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी, ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं। मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, लेकिन एक सवाल मैं वापस, या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे। पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है। आपको क्या लगता है इसमें जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ, या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
3: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
2: सख्त से सख्त मतलब क्या?
3: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा।
2: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
3: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूंगा।
2: आप होशो हवास में?
3: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ। जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
2: पूजा जी, आपको क्या लगता है?
4: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए।
2: नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अगर आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी बेटी,
4: आरोपी मेरी बेटी, बेटी हो तो
2: कल अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
4: ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो। आप एक माँ बोल रही है ये,
2: ठीक है। आप सिया की मम्मी हैं, केतन को जाके अभी कुछ दिन हो गए हैं, क्या आप

0: under the scanner. Those are the developments at a time when both Sia as well as Chetan have turned on each other, blaming the other for the murder. But at this point, the question also is this a defense strategy that was pre-planned by the lover and Sia ahead of the crime committed? We leave it at that. Sujata, thanks for joining me live on That Big Story. Now, a chilling murder conspiracy, a fiancé under arrest, and a trail of evidence that investigators say points to meticulous planning. New CCTV footage, call records, and police claims shed light on what happened before Pune businessman Ketan Agarwal was allegedly pushed to his death from the fort. Here's a report on the shocking case and the investigation into the alleged plot involving Sia and Chetan.
1: This is Sia Goyal and Chetan Chaudhary, the main accused in the murder of Pune's Ketan Agarwal. This is them sitting at a cafe a day before Ketan was pushed to death at Lohgarh Fort. Investigators say it was here, at this cafe, that Sia and Chetan plotted Ketan's murder. It is here on June 17 that the two allegedly discussed the route they would take to the fort and reportedly zeroed in on the exact spot from where Ketan would be pushed off. As officers review CCTV footage, technical evidence and phone records, the case has taken a dramatic turn. Investigators allegedly discovered a relationship between Sia Goyal and Chetan Chaudhary. The two reportedly met last year at a Diwali party. Police claim the two had been in regular contact for months. Call records show more than 2,000 phone conversations over 6 months, lasting a combined 238 hours. The investigation also focused on a mysterious figure seen on CCTV at Lohgarh Fort. Despite the scorching summer heat, the man was wearing a monkey cap, hoodie and mask. Police say the individual was seen communicating with Sia through hand signals, further strengthening their suspicions.
2: तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है
3: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी फिर मैं इधर आया उनको पूछा ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया
1: केतन एंड सिया हैड विजिटेड लोहगढ़ फोर्ट 3 टाइम्स ऑन मई 31 जून 14 एंड जून 18 पुलिस क्लेम एन अर्लियर अटेम्प्ट टू पुश केतन इनटू द गॉर्ज वाज मेड ऑन जून 14 बट फेल्ड According to the probe, Sia later claimed she had accidentally pushed him after being startled by a snake. On June 23, police arrested Sia Goyal and Chetan Chaudhary. Both have been sent to police custody. With Sujata Dwivedi, NDTV Bureau Report.
0: All right, here the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who's spoken on the Ayodhya donation row. He has said regarding the news coming in about Ayodhya, we had stated that an SIT had been constituted. We said that action would commence as soon as the SIT report was received. And you have seen that once the report came in, action began immediately. I assure you that just as I promised, we will ensure the absolute truth comes to light. I was on a visit to Ayodhya. I had stated then too, Ayodhya is a symbol of faith for us all, a symbol of the faith associated with India's Sanatan Dharma. Do not cast aspersions on Ayodhya. Learn to uphold the dignity and decorum of Lord Sri Ram. The Chief Minister of Uttar Pradesh, listen in.
4: मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है अयोध्या पर आक्षेप मत करो प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे
0: The Uttar Pradesh Chief Minister there speaking out on the arrest, stating that after the SIT report was submitted, its initial report to the government on the 23rd of June, they have taken action. The arrests have been made. He also blames the opposition there for politicizing the issue. This is the first comment coming in from the UP Chief Minister after the 8 arrests in the donation row case from Ayodhya. Remember, there have been 8 arrests, including an ex-bank staff, the man with the key, amongst the 8 who have been arrested. This comes at a time when the opposition is not happy with just a SIT probe. They say an SIT probe is not enough, but you have the Uttar Pradesh Chief Minister coming out and asking for the politicization of the matter to stop, because action has been taken as soon as the initial report by the SIT was submitted. That report was submitted to the additional chief secretary, Home, and this is an initial report. The details, of course, are confidential. Nothing could be disclosed to the media at that point in time. The findings have been made available to the Uttar Pradesh government. Now, that's the latest. Over 2 days, you've had 8 persons named in the FIR over the alleged embezzlement of donations received at the Ram Temple, and those arrests have now been confirmed. The names in the FIR include Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovekush Mishra, and 5 others, including Ram Shankar Yadav, alias Tinu. They were associated with the process of counting cash and valuables received as donations at the temple. And all accused were in Ayodhya itself and were arrested on Thursday night. And further questioning is underway when it comes to the interrogation. The probe has deepened after you've had 8 of the accused arrested. Opposition leaders have described the FIR as an eyewash, alleging that it does not fix accountability on senior functionaries of the trust, including the General Secretary, Champat Rai, and the trustee, Anil Mishra. Aishwarya now joins me live. Aishwarya, perhaps the first comment coming in from the Uttar Pradesh Chief Minister after the 8 arrests in the Ayodhya donation row case.
5: Well, certainly, Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, they're appealing to all the devotees of Ram Janmabhoomi Temple and Lord Ram not to be misled by those criticizing recent events, arguing that their intentions are political rather than sincere. He has hit out at the Congress Samajwadi Party that these are the people who are against the Ram Temple, and now they are clearly criticizing the entire recent events which are held. He also mentioned that these critics had previously questioned the existence of Lord Ram, opposed the Ram Janmabhoomi movement and the construction of Ram Temple, and had in the past acted against Hindu religious practices and festivals as well. There is an investigation which is currently going on. The arrests have been made, and he had ensured that no one who will be found guilty will be punished under the law. Yogi Adityanath also accused Congress and the Samajwadi Party of corruption and poor governance in the past in the state of Uttar Pradesh. It is Yogi Adityanath who has assured the devotees that every possible action will be taken against those whosoever will be found guilty in the entire scam.
0: All right, do stay with me. Ranveer also joining us live on The Big Story. Ranveer, the opposition for now stating that an SIT probe is not enough.
6: From the first day of the formation of SIT, opposition is saying that why this SIT has been formed, because this comprised of 2 IAS and 1 IPS officer. Opposition is demanding a committee or SIT comprising of sitting justices, either of High Court or Supreme Court. And this is the logic behind this formation of SIT, that without any FIR, how can any SIT investigate in any of the matter? And it is not a small case. This is a case of embezzlement of at least thousands of crore. So opposition is targeting Bharatiya Janata Party over Ram Mandir donation row. And now CM Yogi Adityanath replied to the opposition and said that without any evidence, how can opposition blame such things? If they have proof, they have to come in front and they have to submit those proofs to the SIT. If they have proof, then they have to come forward. But without any kind of proof, opposition cannot blame such kind of allegations. And if we talk about SIT investigated this matter in Ayodhya for at least 6 days, and after this initial investigation, the SIT submitted its report to state government, and on the basis of recommendation of the special investigative team, state government ordered Ayodhya police to file FIR, and now FIR has been filed. 8 people named, and they are now arrested, and they are in Ayodhya police custody. So after production of the accused before the court in Ayodhya, the investigation will go on further.
0: All right, Ranveer, do stay with me while we also tell our viewers, in moments from now, we will take you through the details of those 8 who have been accused and arrested. Now, a big development has taken place in the Ram Mandir theft case. As per sources, the UP police have arrested all 8 accused, like Ranveer just pointed out, and all are now in police custody after an FIR was registered based on the initial SIT report. The SIT had strongly recommended action against several high-profile individuals in its initial report. The accused who are arrested are identified as Tinu Yadav, Lavkush Mishra, Anukalp Mishra, Avinash Shukla, Manish Yadav, Ram Shankar Mishra. Of the 8 arrested, one of them is Ram Shankar Yadav, alias Tinu Yadav, who is considered a close aide of the Sri Ram Janmabhoomi Trust General Secretary, Champat Rai. Meanwhile, the UP police have invoked charges like criminal conspiracy, breach of trust, dealing in stolen property, and common intention against the accused.
7: मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी मैं इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो ऐसी रिपोर्ट आ गया है, उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद।
6: मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
8: वो सब फंसाया गया और कह रहा
6: है। हाँ,
8: फंसाया गया और कह रहा है।
6: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे हैं?
8: मनीष को अभी 1 महीना काम करे हुआ है।
6: बस आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
8: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए।
6: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
9: भाई के बेटे।
6: अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
8: काम काउंटिंग का ही था, 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
6: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
8: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे।
6: बैंक की तरफ से?
8: जी।
6: टिनू की भूमिका नहीं थी?
8: नहीं, उसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
6: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
8: मनीष उम्र अभी 20 साल।
6: 20 बस? अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ, क्योंकि
8: सिर्फ एक महीना यही केवल जो है मई में काम किया, बस
6: मई में
8: बस।
6: अच्छा, उसके पहले वो?
8: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
6: पढ़ाई
8: करते थे।
6: कहाँ
8: भी उसकी पढ़ाई चल रही है, साकेत से।
6: साकेत से क्या कर रहा है?
8: बीए।
6: ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
8: ऐसा कुछ नहीं है।
6: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
8: ये सब फंसाया गया और क्या भैया?
6: और इसकी वजह क्या है? क्योंकि 8 लोग का ही नाम है, और इसमें
8: अरे जो बड़ी मछलियां उनको नहीं लिया गया, छोटे लोग को फंसा।
6: तो बड़ी मछली कौन है?
8: अरे हम नाम नहीं जानते भैया, हमको उसमें काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग तो काम अपना अपना देखते हैं ना। तो
10: आलोक सर, 8 लोगों के खिलाफ तो प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इनके खिलाफ क्या जांच चल रही है या नहीं चल रही है, या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है?
11: उस FIR में सब आएगा, 8 ही लोग नहीं है। 8 लोग नाम से इसलिए हैं कि SIT रिपोर्ट में उनका नाम है, उसमें स्पष्ट लिखा है एवं अन्य लोग, इन 8 के नाम के बाद लिखा है एवं अन्य लोग एंड अदर अनआइडेंटिफाइड पर्संस, जिनके भी खिलाफ आरोप है, जिनके भी खिलाफ आरोप है, वो जो कोई भी हों, इस एफआईआर के अंतर्गत पूरे अपराध की जांच होगी, सब आरोपों की जांच होगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को फंसने भी नहीं देंगे। पर पुलिस का ये कर्तव्य है कि आपने जिन लोगों के नाम लिए उन समेत सबके बारे में जांच हो, किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है।
10: क्योंकि सर जो और भी दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि छोटी मछली बड़ी मछली, यानी बड़ी मछली के तौर पर चंपत राय जी को, अनिल जी को पेश किया जा रहा है, गोपाल राव को पेश किया जा रहा है, कि इनका खिलाफ कहीं कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, जबकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी मतलब इनके पास में।
11: 2027 का चुनाव लड़ने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो छत पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जांच होगी।
9: जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है, और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं, जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको ज़रूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
12: राम मंदिर चोरी के आरोप में जो लोग भी अभियुक्त हैं तत्परता के साथ वहाँ शासन काम कर रही है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उचित कदम है।
0: Now the investigation into the alleged theft of donations at the Ram Mandir in Ayodhya has widened with 8 people arrested so far. Investigators claim the alleged embezzlement involved individuals entrusted with handling cash and valuables offered by devotees. Ram Shankar Yadav, alias Tinnu Yadav, is said to be a former driver of the Trust's General Secretary Champat Rai. He was associated with VHP's Kar Sevakpuram, who used to count donations. Tinnu is the most talked about face of this controversy. It is said that the keys of the donation boxes used to remain with Tinnu, and being close to the members of the trust, he used to act completely arbitrarily. Tinnu has denied any role in cash counting and blamed unnamed jealous people for the allegations. Next is Ram Shankar Mishra, alias Ravi Mishra, was also in the work of counting donations. He faces allegations of hatching a conspiracy along with the employees who had put his son and son-in-law also into the work of counting money. Investigators also suspect the involvement of his son, Anukalp Mishra, and son-in-law, Lovekush Mishra, both of whom were associated with donation counting. Lovekush is alleged to have helped dispose of the embezzled money. That's the allegation against him. Now, temple attendant Avinash Shukla is accused of being part of the alleged cash manipulation network, while Manish Yadav is under investigation for the alleged misappropriation of gold, silver and jewelry offerings. Former bank employee Subhash Srivastav was the one who oversaw the counting process, is accused of irregularities in counting and fund transfers. Karunesh Pandey, meanwhile, is alleged to have manipulated donation receipts and assisted in diverting the funds. Police say the investigation is continuing and are examining CCTV footage, financial records and the roles of each accused. All allegations are based on the FIR and the ongoing investigation. The accused are presumed innocent unless proven guilty in the court of law, of course, but too many proofs really piling up at this point, despite some denials being issued by the men we just spoke of. Meanwhile, the opposition has trained guns on the BJP government over the theft case in the Ram Mandir. UBT MP Sanjay Raut has claimed that a 4 kg silver brick was donated along with a crore rupees by UBT chief Uddhav Thackeray, but the Ram Mandir Trust never gave them a receipt for the donations. He also urged for strict action in the matter. Meanwhile, Akhilesh Yadav has accused the probe of shielding the big fish, alleging that this is a cover-up under the pretext of an SIT probe.
13: Ayodhya Ram Mandir mein chanda chadhava mein chori aur jo aabhushan gayab hue the uski FIR darj ho gayi hai. Ye bahut gambhir mamla hai. Ram Mandir mein aabhushanon ki aur chadhava chori hone ke baad pradesh ke mukhyamantri ko एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, उनको अपने मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
14: आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये मान लिया कि राम मंदिर चढ़ावा में हेरा फेरी हुई है और इस संबंध में एक FIR अयोध्या में दर्ज हुई। ये यकीनन करोड़ों राम भक्त और राम में आस्था रखने वालों की जीत है। हम उम्मीद करते हैं, समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि इसकी निष्पक्ष और ईमानदार जांच होगी। सिर्फ छोटे लोग ही पनिश नहीं किए जाएंगे बल्कि इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
15: देखिए, कल पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाया 75 जिले में उत्तर प्रदेश के, कि राम जी के जो चढ़ावे की चोरी हुई है उसमें सरकार तत्काल मुकदमा दर्ज कराए। हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्रक दिया पूरे जिले में और उसी के तहत दबाव के तहत आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट को निर्णय लेना पड़ा कि इन FIR कराया, पर FIR केवल खानापूर्ति के लिए की गई है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिनके पूरे अधीन वो काम कर रहा है राम मंदिर ट्रस्ट, नृपेंद्र मिश्रा का नाम नहीं है उसमें, चंपत राय जो सारा माल चंपत कर गए उनका नाम नहीं है उसमें, गोपाल राव का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है एक वहाँ के कर्मचारी ने और वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं जो काम कर रहे थे कि हमसे 40% का कमीशन लिया जाता था। तो इससे साबित हो रहा है कि केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए FIR कराई गई है।
16: श्री राम का जो मंदिर है, ये डकैत लोग, चोर लोग जो लूट लिए मंदिर को, अभी भी मुझे लग रहा है, अच्छा ड्राइवर को, मुंशी को पकड़ करके आप क्या क्या दर्शाना चाहते हैं? ड्राइवर, मुंशी को, छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके अब आप उसके ऊपर में FIR करके और इसको रफा दफा करना चाहते हैं? लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इसको रफा दफा नहीं होने देंगे हम। चंपत राय कहाँ हट गए उसमें से? उनका नाम ही नहीं है FIR में, उनके ड्राइवर का नाम रामचंद्र कोई है। मैं ये कह रहा हूं कि SIT गठित किए, FIR बाद में हुआ, मतलब वहां का जो शुरुआती दौड़े वाला जो वो प्रशासन है वो तो फेल है, यही ना माना जाएगा? अभी देखते रहिए, जो बड़े मछलियां हैं ना अभी जांच होने दीजिए। ये चंपत राय बच नहीं सकते हैं, अगर उनका ड्राइवर का हाथ है तो पक्का है कि इनका भी हाथ होगा।
17: ड्राइवर, रसोई, माली, यही पकड़े जाएंगे बेचारे, और क्या होगा? लोगों को समझ में आ रहा है ये जो खुली डकैती हो रही है, ये सब समझ रहे हैं और राम जी नाराज़ हैं इसीलिए सब परतें खुल रही हैं। भगवान की नाराज़गी नहीं झेल पाएंगे आप। कब तक मुसलमानों को पीट करके या मुसलमानों को दबा करके देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर पाओगे? आपने SIT बनाई थी, कहाँ है उसकी रिपोर्ट?
18: वो तो सबमिट कर दी सरकार ने। सरकार
17: तो फिर FIR क्यों नहीं हुई? FIR ट्रस्ट क्यों करा रहा है? और ट्रस्ट को ही FIR करानी थी तो पहले क्यों नहीं कराई? ये सवाल तो खड़े होंगे ना, जब कोई गड़बड़ होती है ना समझ में नहीं आता, ये बौखलाहट में जल्दबाजी

0: इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है। आपको क्या लगता है इसमें जो जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
1: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
0: सख्त से सख्त मतलब क्या?
1: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा,
0: और
1: फांसी की सजा कड़ी
0: कल
1: से
0: अगर ये
1: कड़ी
0: अदालत में
1: सजा,
0: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
1: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए। मैं तो बोलूँगा
0: आप होशोहवास में ये
1: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
0: पूजा जी, आपको क्या लगता है,
1: मुझे
0: आपका
1: भी
0: क्या
1: ये
0: कहना है?
1: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए।
0: नहीं, मैं सीधी बात कर
1: आरोपी
0: रहा
1: कौन
0: हूं, अगर
1: है?
0: आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आज आपकी
1: हाँ,
0: बेटी है,
1: आरोपी
0: अगर
1: मेरी
0: आपकी
1: बेटी हो
0: बेटी
1: तो
0: कल
1: मेरी
0: अदालत में
1: बेटी,
0: साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
1: ठीक है ना,
0: तो
1: मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये।
2: आप सिया की मम्मी हैं,
1: जी
2: कीर्तन को जाके अभी कुछ दिन हो गए हैं, क्या आपको भी कीर्तन को लेके सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है?
1: दुख, मुझे बहुत दुख है। मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को। आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया। मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए
2: किसी
1: करके।
2: ने भी
1: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है।
2: एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी
1: हाँ
2: चाहिए,
1: जी, हाँ
2: चाहे वो
1: जी,
2: सीआई क्यों नहीं
1: हाँ
2: हो।
1: जी, जरूर।
2: अच्छा, और ये दो विमान आपने बुक किए थे कि केतन के घर वालों ने बुक किए थे, वो जयपुर या
1: ना
2: उदयपुर वाले?
1: मैंने बुक किए, ना सामने वाले केतन के डैडी ने बुक किए, किसी ने बुक नहीं किए, विमान कोई बुक नहीं हुए सर। बुकिंग होने वाली थी वो जुलाई महीने में होने वाली थी, हम संजय नेहाल ट्रेवल्स, संजय अग्रवाल के संपर्क में थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम जो टिकट
2: नहीं,
1: बुक कर,
2: चार्टर चार्टर प्लेन आप
1: चार्टर प्लेन का
2: 14 करोड़
1: तो नहीं
2: 15,
1: सर, नहीं, चार्टर प्लेन का हमने कभी सोचा भी नहीं, और मेरी ताकत नहीं कि मैं चार्टर प्लेन करूं, मैं तो बस पूना से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बाय कार लोगों को लेके जाने वाला था, होटल
2: पूना से
1: रूम
2: अहमदाबाद
1: का।
2: आप कैसे चार्टर प्लेन से जाने वाले?
1: नहीं सर, टिकट बुकिंग 20-20 टिकट मार मार के, धीरे धीरे 20-20 टिकट बुकिंग
2: कितने
1: करके,
2: लोग?
1: 70 कपल्स टोटल,
2: 140
1: 65
2: लोग।
1: टू 70 कपल्स, यानी कि 130 से 140।
2: लेकिन वो 14-15 करोड़ के दो बड़े चार्टर विमान बुक
1: नहीं सर,
2: करके डेस्टिनेशन वेडिंग का जो एक जो न्यूज
1: नहीं,
2: आ रही
1: वो
2: है।
1: कुछ भी नहीं है, ये सब फेक न्यूज है सर, फेक न्यूज है।
3: माय कॉलीग सुजाता नाउ जॉइन्स मी लाइव फ्रॉम पूना। सुजाता, वी हैव स्पोकन अबाउट द डिजिटल ट्रेल, वी हैव स्पोकन अबाउट हाउ बोथ सिया एज वेल एज चेतन आर टर्निंग अगेंस्ट ईच अदर इन द इंटेरोगेशंस। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई सियाज ब्रदर इज ऑल्सो अंडर द स्कैनर। वॉट आर योर सोर्सेज टेलिंग यू अबाउट दिस डिवेलपमेंट?
4: Well, the primary reason why Sahil Goyal is currently being investigated and interrogated is because he was the person who introduced Sia to Chetan at a party last November in 2025. Now, also that Chetan was a close friend of Sahil is what police sources
3: I
4: tell
3: have
4: us.
3: to cut you there because we believe that Ketan's father is speaking to the media. Let's cut across live.
5: होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
6: सर, आपने क्या मांग की है? मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
5: सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
6: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
5: जी, मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी, उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नेता।
6: सर, एसआईटी की मांग की आपने इस पर?
5: सर, ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है।
7: सर, कई सारी क्लासेस में आ रहे हैं, जैसे कि आपको सीधा किस चीज बता रही है इन्वेस्टिगेशन में कि क्या कारण था उस खिलाफ, उसमें से एक था कि केतन वो वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है, वो उसमें कितना तथ्य है?
5: सर, केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
7: कल की माँ का भी रिएक्शन आया है बेटे के सामने, उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो

0: and are being addressed by inexperienced chartered accountants cannot just be a lapse that just happened. This is not just a judgment error that just happened to have. It is something that is by design, is what many would feel.
1: That is, I'm saying, that investigation should be made from March 2020, the date when the trust was formed, each and everything, how many contribution was given, what contribution was given for construction of temple. You are saying afterwards, I'm saying, even beginning, how many people given donations for construction of temple. It will come up 2020, and audit report has to be seen, scrutinized, and who conducted, and why it was conducted by that fellow. He was inexperienced. Why he was appointed an auditor? All the matter should be investigated. And matter very clear. Everything on paper. It will not take more time. But there should be only intention, a fair intention, to catch the real culprit.
0: Okay, all right.
1: And I think that the government is sincere, and the government Doggyji has promised, and have no reason to disbelieve him. I have no reason.
0: Okay.
1: He has said he will do it.
0: All right, Harishankarji. Thank you so much for speaking to us and pointing out that you also feel disappointed and betrayed like crores of devotees. Those allegations coming to light. It's been a day of fast-moving developments. So before we take this story forward, let's get you some of the big reactions that have been coming in on the big shake-up that's unfolding after those questions that came to light about the mismanagement regarding the temple funds in Ayodhya.
2: देखिए नैतिकता की बात करना तो बेकार है. अगर इनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देना था, पहले दिन दे देना चाहिए था. अब जब तमाम लोगों के फोटो और वीडियोस आने लगे हैं, जिन्होंने चंपत राय को सोने चांदी की चीजें भेंट किया, और वो लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि उनको रसीद तक नहीं दी गई, उनको की फोटो नहीं भेजी गई जो कहा गया था, और ये कहा गया कि चांदी सो गला दिया गया. अब उनकी जब छींछानिदार होने लगी और चारों तरफ से आरोपों में घिर गया आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को बचाने के लिए ये इस्तीफे का अब नाटक हो रहा है. इसका कोई अर्थ नहीं है, और इस्तीफे के नाम पर भी उनको बचना नहीं चाहिए. अगर उन्होंने गबन किया है, घपला किया है, चोरी की है, डकैती डाली है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए.
3: कि आप मांग कर रहे हैं, क्योंकि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, पर यह भी याद रखना जरूरी है कि जो एफआईआर है उसमें चंपत राय जी का नाम नहीं है. उन्होंने नैतिक आधार पर अभी अपना इस्तीफा दिया है. ही हैज टेकन अ मॉरल डिसीजन, ऑन मॉरल ग्राउंड्स ही हैज रिजाइंड.
2: कंप्लीट. एक बात याद रखिए कि 100, 200, 400 करोड़ की, 1000 करोड़ की चोरी नौकर और ड्राइवर नहीं कर सकते हैं. वो चोरी बड़े लोग ही कर सकते हैं, और उनमें बड़े लोगों का ही हाथ होगा. नौकर ड्राइवर को बलि का बरका बकरा बनाया जाता है, और वही कोशिश यहाँ पर हो रही है.
4: देखिए, सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा चंपत राय जी के. पहले तो सारे जब सब तथ्य सबूत सामने हैं, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ट्रस्ट के सारे लोगों को हटाया जाना चाहिए. और कांग्रेस की शुरू से मांग है कि एक सीबीआई ईडी से अदालत के देख रेख में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. प्रकरण बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा है, और करोड़ों करोड़ों सनातनी आस्था का विषय भी है. तो इसमें पारदर्शिता, विश्वसनीयता उपजे, ऐसी काम होनी चाहिए. सिर्फ एक इस्तीफे से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है भ्रष्टाचार की. जब से ये ट्रस्ट बना है तब से शुरू में भी बताया गया कि ये एक जांच एजेंसी ने, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी ने उसका ऑडिट किया, बताया कि इस तरह से इसमें गलतियां, इसको ठीक किया जाना चाहिए. कुछ नहीं हुआ. जब जमीनों का शुरू में घोटाला क्या आया तो भी एसआईटी बनी, उसने रिपोर्ट कर दी. क्या हुआ, भारत सरकार की सीएजी ने भी घोटाले की बात कही. बड़ी सारा ट्रस्ट भंग करें, मामला सीबीआई को दें, अदालत की देख रेख में ये जाँच हो.
5: मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं. ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी मैं इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो ऐसी रिपोर्ट आ गया है उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद।
6: हमारे इस समय जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो रामलला के ऊपर विश्वास बनाए रखे हैं और उसमें पूरा पैरवी किए, वो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं जो रामलला का निर्णय मान रहे हैं। हम अपने आत्मा से खुश हैं, चाहे दंड देने हम लोग तैयार हैं। ये तो झूठ है, मुख्यमंत्री हमारे जो कर रहे हैं वो राम जी का काम कर रहे हैं, विपक्षी वाले बोलते रहेंगे।
7: को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
8: वो सब फंसाया गया और कह रहा
7: है।
8: हाँ, फंसाया गया और कह रहा है।
7: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
8: मनीष को भी एक महीना काम करे हुआ है
7: बस।
8: बस
7: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
8: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए।
7: अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
9: भाई के बेटे।
7: अच्छा अच्छा, तो मतलब एक ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
8: काम काउंटिंग का ही था, एक ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
7: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
8: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
7: बैंक की तरफ से।
8: जी,
7: टिनू की भूमिका नहीं थी?
8: नहीं, उसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
7: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
8: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
7: 20 बस? अच्छा, तो इसमें सिर्फ एक महीना हुआ? क्योंकि
8: सिर्फ एक महीना हुआ, सिर्फ एक महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस,
7: मई में
8: बस।
7: अच्छा, उसके पहले? वो
8: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
7: पढ़ाई?
8: पढ़ाई करते थे।
7: कहाँ?
8: अभी भी उसकी पढ़ाई चल रही है साकेत से।
7: साकेत से क्या कर रहा है?
8: बीए।
7: बीए? ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
8: ऐसा कुछ नहीं है।
7: हाँ,
8: ऐसा कुछ नहीं है।
7: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
8: ये सब फंसाया गया और क्या भैया,
7: इसकी वजह क्या? क्योंकि 8 लोग का ही नाम है और इसमें
8: अरे जो बड़ी मछलियाँ उनको नहीं लिया गया, छोटे को लोग को।
7: बड़ी मछली कौन?
8: अरे हम नाम नहीं जानते भैया, हमको उसमें काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग तो काम अपना अपना देखते हैं ना। तो
10: आलोक सर, 8 लोगों के खिलाफ तो प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी, इनके खिलाफ क्या जांच चल रही है या नहीं चल रही है, या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है?
11: उस FIR में सब आएगा, 8 ही लोग नहीं है। 8 लोग नाम से इसलिए हैं कि SIT रिपोर्ट में उनका नाम है, उसमें स्पष्ट लिखा है एवं अन्य लोग, इन 8 के नाम के बाद लिखा है एवं अन्य लोग एंड अदर अनआइडेंटिफाइड पर्संस, जिनके भी खिलाफ आरोप है, जिनके भी खिलाफ आरोप है, वो जो कोई भी हो, इस FIR के अंतर्गत पूरे अपराध की जांच होगी, सब आरोपों की जांच होगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को फंसने भी नहीं देंगे। पर पुलिस का ये कर्तव्य है कि आपने जिन लोगों के नाम लिए उन समेत सबके बारे में जांच हो, किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है।
10: क्योंकि सर, जो और भी दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि छोटी मछली बड़ी मछली, यानी बड़ी मछली के तौर पर चंपत राय जी को, अनिल जी को पेश किया जा रहा है, गोपाल राव को पेश किया जा रहा है, कि इनका खिलाफ कहीं कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, जबकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी मतलब इनके पास में।
11: 2027 का चुनाव लड़ने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, हम तो छत पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जांच होगी।
12: योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं, जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको ज़रूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
13: राम मंदिर चोरी के आरोप में जो लोग भी अभियुक्त हैं तत्परता के साथ वहाँ शासन काम कर रही है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उचित कदम है।
3: All right, we're taking a very quick break because many, many aspects, like we said, on this story, which we'll discuss ahead on the show as well. The political, the moral, what happens to the Ram Mandir Trust? Will there be a wider investigation? Stay tuned. We're back in a minute.

0: Welcome back. A big development in Pune murder case. Ketan's family met Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Ketan's father said Chief Minister is assured strictest action will be taken against Sia and Chetan. He also said that Chief Minister has assured that case will be fast-tracked. Maharashtra Chief Minister expressing shock over the tragedy and said that we should explore what are the reasons behind such criminal activities. Meanwhile, investigators are checking if Chetan was blackmailing Sia and threatening to expose their relationship. Police are also auditing Sia's bank accounts to verify whether she was secretly transferring large sums of money to Chetan. Speaking to investigators, Sia claimed she had expressed her unwillingness to marry him, but Chetan had threatened her using his family influence. We have reactions. Take a look.
1: केतन अग्रवाल केस में आज पहली बार सिया के माँ बाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं. मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, लेकिन एक सवाल मैं वापस या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे. पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है. आपको क्या लगता है इसमें जो जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
2: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए.
1: सख्त से सख्त मतलब क्या?
2: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा.
1: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
2: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए. मैं तो बोलूंगा
1: आप होशो हवास में
2: ये? यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ. जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए.
1: पूजा जी आपको क्या लगता है?
3: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए.
1: नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी बेटी,
3: आरोपी मेरी बेटी, बेटी हो तो
1: कल अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
3: ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो. आप एक माँ बोल रही है ये.
0: We'll slip in a short break. More updates on the other side.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM.
2: Landed in the beautiful state of Andhra Pradesh, which has no shortage

0: उसे सक्सेस सक सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
1: सक्सेस सक मतलब क्या?
0: सक्सेस फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
1: कल कल
0: सजा
1: अगर
0: कड़ी
1: कल
0: से
1: अगर ये
0: कड़ी
1: अदालत में
0: सजा,
1: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
0: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूँगा।
1: आप होशोहवास में ये?
0: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
1: पूजा जी, आपको क्या लगता है,
2: मुझे
1: आपका क्या
2: भी
1: कहना है?
2: यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी
1: नहीं,
2: चाहिए।
1: मैं सीधी बात कर
2: आरोपी
1: रहा हूँ,
2: कौन
1: अगर
2: है?
1: आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी
2: हाँ,
1: आपकी बेटी है,
2: आरोपी
1: अगर
2: मेरी
1: आपकी
2: बेटी
1: बेटी
2: हो तो
1: कल
2: मेरी
1: अदालत में
2: बेटी,
1: साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
2: ठीक है ना,
1: तो
2: मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये।
3: आप सिया की मम्मी हैं,
2: जी
3: कीर्तन को जाके अभी कुछ दिन हो गए हैं, क्या आपको भी कीर्तन को लेके सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है?
2: दुख, मुझे बहुत दुख है। मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को। आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया। मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
3: किसी
2: करके
3: ने भी
2: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है।
3: एक्शन होना चाहिए, सक्सेस सक सजा मिलनी
2: हाँ जी,
3: चाहिए,
2: हाँ
3: चाहे वो
2: जी,
3: सीआई क्यों नहीं।
2: हाँ जी, जरूर।
3: अच्छा, और ये दो विमान आपने बुक किए थे कि केतन के घर वालों ने बुक किए थे, वो जयपुर या
0: ना
3: उदयपुर वाले?
0: मैंने बुक किए, ना सामने वाले केतन के डैडी ने बुक किए, किसी ने बुक नहीं किए, विमान कोई बुक नहीं हुए सर। बुकिंग होने वाली थी वो जुलाई महीने में होने वाली थी, हम संजय नेहाल ट्रेवल्स, संजय अग्रवाल के संपर्क में थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम जो टिकट
3: नहीं,
0: बुक कर,
3: चार्टर चार्टर प्लेन
0: चार्टर प्लेन
3: 14 करोड़
0: नहीं
3: पंद्रह
0: सर, नहीं, चार्टर प्लेन का हमने कभी सोचा भी नहीं, और मेरी ताकत नहीं कि मैं चार्टर प्लेन करूं, मैं तो बस पूना से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बाईकार लोगों को लेके जाने वाला था, होटल
3: पूना से
0: में
3: अहमदाबाद आप कैसे चार्टर प्लेन से जाने वाले?
0: नहीं सर, टिकट बुकिंग 20-20 टिकट मार मार के, धीरे धीरे 20-20 टिकट बुकिंग
3: कितने
0: करके,
3: लोग?
0: बस 70 कपल्स टोटल, 65 to 70 कपल्स, यानी कि 130 से 140।
3: लेकिन वो 14-15 करोड़ के दो बड़े चार्टर विमान बुक
0: नहीं,
3: करके डेस्टिनेशन वेडिंग का जो एक जो न्यूज आ रही
0: वो
3: है।
0: कुछ भी नहीं है, ये सब फेक न्यूज है सर, फेक न्यूज है।
4: Some breaking news now coming in on the Mandir, Ram Mandir theft case and the inside story now emerging. Trust officials are said to have reviewed the bank deposits in the last week of May. Daily emptying of the donation boxes were cross-checked with the deposits. Remember, every day hundreds of pilgrims would come to the Ram Mandir and give donations. Now, this was checked with the deposits and shortages of 500 note bundles was noticed. So now it is emerging, or it is being claimed that this was noticed in the last week of May, that hidden cameras were installed in the cash counting room and CCTV captured this alleged theft that was taking place. But this pertains to the last week of May, when regarding the donation boxes, and when it was found that there were some discrepancies and a shortage of 500 note bundles was noticed. Well, let's go across to Ajay Dubey, who is tracking these developments. And Ajay, this comes on a day that 8 people have been arrested. This is after an SIT was constituted. However, now you know, sources claiming that that the theft was known about in the last week of May.
5: Definitely, see, SIT, it is the landmark of in this case. SIT, whatever data SIT collected, they have given a primary report to the ACS home. And what we're being informed is that, see, the important most, the baddest thing in this case is that the evidences, they are very much tempered. See, they just have 45 days of CCTV visuals. They have no physical checkup of those individuals who were participating into the donation process. So that is the reason for the less, only for the 42 days, they have CCTV details, and what they have learned is that in 42 days only, 70 times attempt was made. Why? Because in the single day, 2 times this process happened in the Ram Mandir temple. There are various dan petis everywhere in the temple premises, and 2 times in a day they have taken to the room where this physical collections happens, where they put cash and then they start calculating that cash, and in that process only they have done this cheating, they have done this fraud, and in exclusive FIR copy.

0: details where the details are being informed how the things happened in this case. In the complaint, we have informed regarding the complaint yesterday in the evening only, what complaint trust members have given in this case, and with the names it is mentioned, various accusation has been made, and on this accusation, various acts of Bharati Dand Sanhita, we can see today they are arrested, the investigation is still going on, and SIT will soon visit to Ayodhya, and more findings will come out in this case.
1: All right, Ajay, do stay on with us. Let's take the viewers through all the developments that have taken place in this shocking story that's really sent shockwaves across the country. The fact that money donated to the Ram Mandir has been stolen, embezzled. Those are the allegations, the embezzlement scandal at the Ayodhya Ram Temple. Now, after the arrest of 8 people, some big resignations have also taken place. According to sources, the General Secretary of the Ram Mandir Trust, Champat Rai, and the Ram Temple Trust member, Anil Mishra, have both resigned from their posts on moral grounds. Remember, these are very high functionaries of that temple trust that ran the Ram Mandir in Ayodhya. This after allegations that crores of donations over the last few years to the temple have been stolen by those working at the Ram Mandir. Remember, many questions being raised about jewellery, about cash, about silver bricks that were all donated to the Ram Temple. This comes after the UP police arrested 8 accused, and all are now in police custody. These are the 8 who were seen on CCTV. The SIT, which was formed after uproar over the allegations, had strongly recommended action against several high-profile individuals in its preliminary report. The accused who are arrested are identified as Tinu Yadav, Lovekush Mishra, Anukalp Mishra, Avinash Shukla, Manish Yadav, Ramashankar Mishra. Of the 8 arrested accused, one of them, Tinu Yadav, is considered a close aide of Champat Rai. So that has been absolutely shocking. He is known as somebody who's very close to Champat Rai, and the fact that he too is an accused in this embezzlement case. Meanwhile, Chief Minister Yogi Adityanath assured action against all the accused involved. He says, we will assure and ensure that the absolute truth comes to light, even as the opposition claims that those arrested are small fish in the case and that crores has been siphoned off.
2: मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था. मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है. अयोध्या पर आक्षेप मत करो. प्रभु श्री राम कि मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है. एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी. और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई. और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे.
1: All right, UP Chief Minister promising the strictest action. But let's take you through what we know so far. And this is the breaking news that's come in regarding the last 40 days and what the revelations have been. There were 70 instances of theft in the last 42 days. Remember, end of May is when CCTV cameras were actually put in the counting room. Lapses were found in the handling of the cash. Mismanagement at the donation counting room is what was found. So those CCTV cameras were put in, and that's when a lot of the allegations were found to be true, that money was being embezzled. Discrepancies were also found in the number of donation boxes and the official account. So they were undercounting the amount of donations and the money was being taken away. A mismanagement of the maintenance of records. There was, it seems, no proper oversight in all of this. There is a trust really to run the Ram Temple and all these donations, but it seems there was not enough oversight, lapses in the classification of the donations, lack of adequate CCTV coverage was also found to be one of the failings there. So these are the big revelations that sources have told NDTV. Now, NDTV's Padmaja Joshi spoke exclusively with senior lawyer Harishankar Prasad on this issue.
3: Harishankar ji, your first reaction to the resignation of Champat Rai and Anil Mishra from the Ram Mandir Trust?
4: I will only say that keeping in view the fairness of inquiry, so that people may have faith, they've resigned. Nothing more, nothing less can be said at this moment. The question will be that there will be inquiry, a site inquiry, FIR, and any other inquiry. So being a responsible person, he has resigned. We cannot attribute anything this way or that way against any person. Inquiry is going on. Champat Rai ji and Anil Mishra ji, they have resigned. And information has been given for a smooth inquiry so that there will be no allegation of unfairness. Okay. People may have faith this inquiry has been done. But opposing parties, due to political reasons, they are maligning. The persons who were against Ram Janmabhoomi, they have crushed the movement. Now they've got a chance to say something. But this is not an issue will be politicized. Political issue nahi. It should be that whether those persons who are culprit should be brought to the books, should be punished, and a fair method be evolved for future. So in future, this may not happen. You want to cash this much? It is political reasons. Ye nahi ho sakta. This is not an issue.
1: Harishankar ji,
4: I also say that inquiry should be there, and a wrongdoer should not be spared, however it may be. It should be punished. Let the evidence come. Let the evidence come.
1: Harishankar ji, are you personally disappointed, dejected, given the fact that, you know, these allegations are coming in from a temple and a movement that you've been so personally involved in for such a long time?
4: Not only I, lakhs, crores of people who are Rambabs, they're astonished, they're feeling betrayed. It is something haunting our emotions. It is very, no word in my mouth to say, condemn this. But going on condemning will not solve the problem. The problem, it is to be solved, present and future. Presently, the guilty person be punished, and for future, a system be evolved so that it may not happen in future. I'm concerned with this. We have fought for 500 years. I myself have been with this movement from 1986 to 2019 continuously. And it was a dream. In a lifetime, we may see a glorious temple of Ram Lalaji at the place. That has come true. Now it is unfortunate and very unfortunate that this type of disappear has happened. It is maybe administrative lapses.
5: नैतिकता की बात करना तो बेकार है. अगर इनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देना था तो पहले दिन दे देना चाहिए था. अब जब तमाम लोगों के फोटो और वीडियोस आने लगे हैं जिन्होंने चंपत राय को सोने चांदी की चीजें भेंट किया, और वो लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि उनको रसीद तक नहीं दी गई, उनको उनकी फोटो नहीं भेजी गई जो कहा गया था, और ये कहा गया कि चांदी गला दिया गया. अब उनकी जब छीछा निधर होने लगी और चारों तरफ से आरोपों में गिर गया आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, तो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को बचाने के लिए ये इस्तीफे का अब नाटक हो रहा है. इसका कोई अर्थ नहीं है, और इस्तीफे के नाम पर भी उनको बचना नहीं चाहिए. अगर उन्होंने गबन किया है, घपला किया है, चोरी की है, डकैती डाली है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए.
3: कि आप मांग कर रहे हैं, क्योंकि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, पर यह भी याद रखना जरूरी है कि जो एफआईआर है उसमें चंपत राय जी का नाम नहीं है. उन्होंने नैतिक आधार पर अभी अपना इस्तीफा दिया है. ही हैज टेकन अ मॉरल डिसीजन, ऑन मॉरल ग्राउंड्स ही हैज रिजाइंड.
5: कंप्लीट. एक बात याद रखिए कि 100, 200, 400 करोड़ की, 1000 करोड़ की चोरी नौकर और ड्राइवर नहीं कर सकते हैं. वो चोरी बड़े लोग ही कर सकते हैं, और उनमें बड़े लोगों का ही हाथ होगा. नौकर ड्राइवर को बलि का बरका बकरा बनाया जाता है, और वही कोशिश यहाँ पर हो रही है.
6: देखिए, सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा चंपत राय जी की. पहले तो सारे जब सब तथ्य सबूत सामने हैं तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ट्रस्ट के सारे लोगों को हटाया जाना चाहिए. और कांग्रेस की शुरू से मांग है कि एक सीबीआई ईडी से अदालत के देखरेख में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. प्रकरण बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा है, और करोड़ों करोड़ों सनातनी आस्था का विषय भी है. तो इसमें पारदर्शिता विश्वसनीयता उपजे, ऐसी काम होनी चाहिए। सिर्फ एक इस्तीफे से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है भ्रष्टाचार की। जब से ये ट्रस्ट बना है तब से, शुरू में भी बताया गया कि ये एक जांच एजेंसी ने, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी ने उसका ऑडिट किया, बताया कि इस तरह से इसमें गलतियां, इसको ठीक किया जाना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। जब जमीनों का शुरू में घोटाला क्या आया तो भी SIT बनी, उसने रिपोर्ट कर दी, क्या हुआ। भारत सरकार की CAG ने भी घोटाले की बात कही। बड़ी सारा ट्रस्ट भंग करें, मामला CBI को दें, अदालत की देख रेख में ये जाँच हो।
1: All right, let's listen in to some of the other reactions we have on this big story.
7: मंदिर पर जो आरोप जो आया था, SIT ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज SIT रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो SIT रिपोर्ट आ गया है उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, मैं उनका धन्यवाद।
8: हमारे इसमें जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और रामलाल के ऊपर विश्वास बनाए रखे हैं और उसमें पूरा पैरवी किए, वो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो रामलाल का निर्णय मान रहे हैं, हम अपने आत्मा से खुश हैं, चाहे दंड देने हम लोग तैयार हैं। ये तो झूठ है, मुख्यमंत्री हमारे जो कर रहे हैं वो राम जी का काम कर रहे हैं, विपक्षी वाले बोलते रहेंगे।
9: मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
10: वो सब फंसाया गया और कह रहा
9: है।
10: फंसाया गया और कह रहा है।
9: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
10: मनीष को अभी एक महीना काम करे हुआ है।
9: बस आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
10: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए।
9: अच्छा, पड़ोस मतलब रिश्तेदार नहीं है?
11: भाई के बेटे।
9: अच्छा, तो मतलब एक ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
10: काम काउंटिंग का ही था, एक ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
9: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
10: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
9: बैंक की तरफ से।
10: जी,
9: टिनू की भूमिका नहीं थी?
10: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
9: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
10: मनीष की उम्र है 20 साल।
9: 20 बस? अच्छा, तो इसमें सिर्फ एक महीना हुआ, क्योंकि
10: सिर्फ एक महीना यही केवल जो है मई में काम किया, बस
9: मई में
10: बस।
9: अच्छा, उसके पहले वो?
10: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
9: पढ़ाई
10: करते थे?
9: कहाँ
10: भी उसकी पढ़ाई चल रही है, साकेत से।
9: साकेत से क्या कर रहा है?
10: BA।
9: ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
10: ऐसा कुछ नहीं है।
9: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
10: ये सब फंसाया गया और क्या भैया?
9: इसकी वजह क्या है? क्योंकि 8 लोग का ही नाम है और इसमें
10: अरे जो बड़ी मछलियां उनको नहीं लिया गया, छोटे को लोग को फंसा।
9: तो बड़ी मछली कौन है?
10: अरे हम नाम नहीं जानते भैया, हमको उसमें काम थोड़ी ना कर रहा है, हम लोग तो काम अपना देखते हैं ना। तो
12: योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं, जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी, उसको ज़रूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
1: Now the opposition has trained its guns on the BJP government over the theft case in Ram Mandir. Do remember, UP elections are going to take place in a few months' time. UBT MP Sanjay Raut has claimed that 4 kilos of silver bricks was donated along with 1 crore rupees by UBT chief Uddhav Thackeray. But the Ram Mandir Trust never gave them any receipt of the donations. He also urged for strict action in the matter. Meanwhile, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, who had first publicly raised this entire issue after a whistleblower had raised it on social media, he has accused the probe of shielding the big fish, alleging that this is a cover-up under the pretext of an SIT probe.
11: प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, ये डकैत लोग, चोर लोग जो लूट लिए मंदिर को, अभी भी मुझे लग रहा है। अच्छा, ड्राइवर को, मुंशी को पकड़ करके आप क्या क्या दर्शाना चाहते हैं? ड्राइवर, मुंशी को, छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके अब आप उसके ऊपर में FIR करके और इसको रफा दफा करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इसको रफा दफा नहीं होने देंगे हम। चंपत राय कहाँ हट गए उसमें से? उनका नाम ही नहीं है FIR में। उनके ड्राइवर का नाम रामचंद्र कोई है। मैं ये कह रहा हूं कि SIT गठित किए, FIR बाद में हुआ, मतलब वहां का जो शुरुआती दौड़े वाला जो वो प्रशासन है वो तो फेल है, यही ना माना जाएगा? अभी देखते रहिए, जो बड़े मछलियां हैं ना, अभी जांच होने दीजिए। ये चंपत राय बच नहीं सकते हैं। अगर उनका ड्राइवर का हाथ है तो पक्का है कि इनका भी हाथ होगा।
13: ड्राइवर, रसोइये, माली, यही पकड़े जाएंगे बेचारे, और क्या होगा? लोगों को समझ में आ रहा है ये जो खुली डकैती हो रही है, ये सब समझ रहे हैं और राम जी नाराज़ हैं, इसीलिए सब परतें खुल रही हैं। भगवान की नाराज़गी नहीं झेल पाएंगे आप। कब तक मुसलमानों को पीट करके या मुसलमानों को दबा करके देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर पाओगे? आपने SIT बनाई थी, कहाँ है उसकी रिपोर्ट?
14: वो तो सबमिट कर दी सरकार ने। सरकार
13: तो फिर FIR क्यों नहीं हुई? FIR ट्रस्ट क्यों करा रहा है? और ट्रस्ट को ही FIR करानी थी तो पहले क्यों नहीं कराई? ये सवाल तो खड़े होंगे ना। जब कोई गड़बड़ होती है ना, समझ में नहीं आता। ये बौखलाहट में, जल्दबाजी में जो काम हो रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भगवान नाराज हैं तो भगवान की नाराजगी झेल पाना बहुत मुश्किल काम होगा।
1: All right, so those were some of the reactions by the opposition there on this big story, which will continue to track for the moment, slipping into a short break. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: the buck truly stops here, because this is a story that we have pursued doggedly on your show, where we had asked for an FIR to be filed. Speaking of the politics, first reaction from the Samajwadi Party. They have now trained their guns on Yogi Adityanath. All eyes are going to be on the role of Champat Rai. The fact is that now you even have Nipendra Mishra saying there was something wrong that was going on. There is a problem in the temple donation, or there is no problem?
1: No, Padmaja. I am no one to accept.
0: ऐसे भक्त हैं जो कि आके कह रहे हैं, एक सिंधी समाज है, वो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों का चांदी चढ़ाई थी. कहाँ पर है वो चांदी?
2: सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश में या पूरी दुनिया में कौन कह रहा है राम मंदिर की चोरी होना अच्छा काम हुआ?
0: इंडिविजुअल विद वेरी लिटिल एक्सपीरियंस वॉज अपॉइंटेड एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट.
3: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ. The show that sets the prime.
0: Welcome back. Let's now get you news from West Asia, and a setback just when it

0: breaking news. Till now, 70 lakhs in cash has been recovered, he's saying, after questioning of the accused. Remember, 8 people have been arrested and this cash has been recovered from various places. So let's take you through this entire matter and all the developments. The alleged donation theft inside the Ram temple, according to investigators, wasn't detected overnight. There was a shortage of 500 rupee note bundles, which actually triggered suspicion, prompting the installation of hidden cameras inside the cash counting room. The first red flag emerged when trust officials noticed the bank deposits were lower than expected, despite donation boxes being emptied regularly. The hidden footage allegedly exposed the modus operandi. Investigators claim some employees blocked the visible CCTV cameras, while others removed notes from cash bundles and hid them in their clothes. The SIT also alleges a second method: extra notes were inserted into bundles during counting, later removed before the cash reached the bank, allowing the vouchers to match while money was allegedly siphoned off. Remember, this issue was also raised in early June by the Samajwadi Party. So the big story, the embezzlement scandal at the Ayodhya Ram temple after the arrest of 8 people. Now some big resignations, and according to sources, the General Secretary of Ram Mandir Trust, Champat Rai, and Ram Temple Trust member Anil Mishra have resigned from their posts on moral grounds after allegations that crores of donations to the temple have been stolen by those working at the mandir. This has been going on for over 2 years now, and this comes after the UP police arrested all 8 accused. The SIT, which was formed after uproar over the allegations, remember, Samajwadi Party had raised it, and after that the SIT was appointed to investigate. They have now strongly recommended action against several high-profile individuals. The accused who are arrested are identified as Tinu Yadav, Lavkush Mishra, Anakulp Mishra, Vinash Shukla, Manish Yadav and Ramashankar Mishra. One of them, Tinu Yadav, who is considered a close aide of Champat Rai. Meanwhile, Chief Minister Yogi Adityanath assured action against all accused involved in the case. He said, "We will ensure the absolute truth comes to light," even as the opposition claims those arrested are just the small fish in the case and crores has been siphoned off.
1: मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था. मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है. अयोध्या पर आक्षेप मत करो. प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कद पे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है. एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी. और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई. और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे.
2: देखिए, नैतिकता की बात करना तो बेकार है. अगर इनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देना था तो पहले दिन दे देना चाहिए था. अब जब तमाम लोगों के फोटो और वीडियोस आने लगे हैं जिन्होंने चंपत राय को सोने चांदी की चीजें भेंट किया, और वो लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि उनको रसीद तक नहीं दी गई, उनको उनकी फोटो नहीं भेजी गई जो कहा गया था, और ये कहा गया कि चांदी सो गला दिया गया. अब उनकी जब छींचा निधर होने लगी और चारों तरफ से आरोपों में घिर गया आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, तो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को बचाने के लिए ये इस्तीफे का अब नाटक हो रहा है. इसका कोई अर्थ नहीं है, और इस्तीफे के नाम पर भी उनको बचना नहीं चाहिए. अगर उन्होंने गबन किया है, घपला किया है, चोरी की है, डकैती डाली है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए.
3: ये आप मांग कर रहे हैं क्योंकि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, पर यह भी याद रखना जरूरी है कि जो एफआईआर है उसमें चंपत राय जी का नाम नहीं है. उन्होंने नैतिक आधार पर अभी अपना इस्तीफा दिया है. ही हैज टेकन अ मॉरल डिसीजन, ऑन मॉरल ग्राउंड्स ही हैज रिजाइंड.
2: कंप्लीट. एक बात याद रखिए कि 100, 200, 400 करोड़ की, 1000 करोड़ की चोरी नौकर और ड्राइवर नहीं कर सकते हैं. वो चोरी बड़े लोग ही कर सकते हैं और उनमें बड़े लोगों का ही हाथ होगा. नौकर ड्राइवर को बलि का बरका बकरा बनाया जाता है, और वही कोशिश यहाँ पर हो रही है.
4: सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा चंपत राय जी के. पहले तो सारे, जब सब तथ्य सबूत सामने हैं तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ट्रस्ट के सारे लोगों को हटाया जाना चाहिए। और कांग्रेस की शुरू से मांग है कि एक सीबीआई ईडी से अदालत के देख रेख में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। प्रकरण बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा है और करोड़ों करोड़ों सनातनी आस्था का विषय भी है, तो इसमें पारदर्शिता विश्वसनीयता उपजे ऐसी काम होनी चाहिए। सिर्फ एक इस्तीफे से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है भ्रष्टाचार की। जब से ये ट्रस्ट बना है तब से शुरू में भी बताया गया कि ये एक जांच एजेंसी ने, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी ने उसका ऑडिट किया, बताया कि इस तरह से इसमें गलतियां, इसको ठीक किया जाना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। जब जमीनों का शुरू में घोटाला क्या आया तो भी एसआईटी बनी, उसने रिपोर्ट कर दी, क्या हुआ। भारत सरकार की सीएजी ने भी घोटाले की बात कही। बड़ी सारा ट्रस्ट भंग करें, मामला सीबीआई को दें, अदालत की देख रेख में ये जांच हो।
0: Now, this entire case has sent shockwaves across the country, especially among devotees of the Ram Mandir. Let's now take a look at some of the reactions coming in from people there in Ayodhya.
5: Mandir par jo aarop jo aaya tha, SIT ne jo jaanch kiya hai, Pradesh sarkar ke aur Kendra sarkar ko main dhanyavaad deta hu. Ye sarkaron ne jis tarah se ye jo chori par aarop vipaksh lagate the, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी मैं इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो ऐसी रिपोर्ट आ गया है उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद।
6: हमारे इसमें जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो रामलला के ऊपर विश्वास बनाए रखे हैं और उसमें पूरा पैरवी किए, वो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं जो रामलला का निर्णय मान रहे हैं। हम अपने आत्मा से खुश हैं, चाहे दंड देने हम लोग तैयार हैं। ये तो झूठ है, मुख्यमंत्री हमारे जो कर रहे हैं वो राम जी का काम कर रहे हैं, विपक्षी वाले बोलते रहेंगे।
7: निश को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
8: वो सब फंसाया गया और कह रहा
7: है। हाँ,
8: फंसाया गया और कह रहा है।
7: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे हैं?
8: मनीष को भी एक महीना काम करे हुआ है।
7: बस आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
8: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए।
7: अच्छा, पड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है?
9: भाई के बेटे।
7: अच्छा, तो मतलब एक ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था?
8: काम काउंटिंग का ही था, एक ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं।
7: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
8: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे।
7: बैंक की तरफ से?
8: जी।
7: टिनू की भूमिका नहीं थी?
8: नहीं, उसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
7: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
8: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
7: 20 बस? अच्छा, तो इसमें सिर्फ एक महीना हुआ, क्योंकि
8: सिर्फ एक महीना यही केवल जो है मई में काम किया, बस
7: मई में
8: बस।
7: अच्छा, उसके पहले वो?
8: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
7: पढ़ाई
8: करते थे।
7: कहाँ
8: भी उसकी पढ़ाई चल रही है, साकेत से।
7: साकेत से क्या कर रहा है?
8: बीए।
7: ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
8: ऐसा कुछ नहीं है।
7: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
8: ये सब फंसाया गया और क्या भैया?
7: और इसकी वजह क्या है? क्योंकि आठ लोग का ही नाम है और इसमें,
8: अरे जो बड़ी मछलियां उनको नहीं लिया गया, छोटे लोग को।
7: बड़ी मछली कौन?
8: अरे हम नाम नहीं जानते भैया, हमको उसमें काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग तो काम अपना अपना देखते हैं ना। तो
10: योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं, जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
11: राम मंदिर चोरी के आरोप में जो लोग भी अभियुक्त हैं, तत्परता के साथ वहाँ शासन काम कर रही है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उचित कदम है।
0: ब्रेक Breaking news now coming in the Ram Temple donation case, and all the 8 who were accused and have been arrested by the SIT have now been produced in court. Remember, we were bringing you that information, and now the visuals as well, that you can see the car coming in to the court, and these are all the 8 accused who have been arrested, which includes 6 temple staff who are responsible for counting the cash. This is Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lovekush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav, and Ram Shankar Yadav, who is also known as Tinu, and he is the one who is a close aide of Champat Rai. So there you can see visuals of the 8 accused who are being produced in court, and lots of revelations have now emerged. In fact, cash has also been recovered ever since this arrest has taken place. Information about how these people were caught on CCTV actually it's siphoning away that cash, donations that had come to the Ram Mandir, and over the last couple of days 70 lakhs has also been recovered from various locations after speaking to the accused. Well, let's go across to Ranveer, who is tracking all these developments. And Ranveer, we now have the visuals. You were talking about the accused being produced in court. We now have the visuals of the accused being produced in court. Take us through all the latest developments. Cash has also been recovered, and there's a possibility of the involvement of some bank employees.
7: As per the sources, the police recovered some cash as well as some silver from after initial interrogation of the accused. And I'm here in Ayodhya court. I'll show you the pictures. All 8 accused, they are being produced in ACGM court. Presently, vacation is going on, and today is obviously Muharram, so gazetted holiday. And that's why the ACGM court, she is in court now, and all 8 accused are there inside the courtroom, and huge security deployment can also be seen. You'll see to stop media, they have some police barricades here, and also some heavy police deployment outside this court. So due to vacation, there is entirely no one inside the court except policemen, these accused, and media. So all these accused, they are inside the court, and in a couple of minutes, court will decide whether they will be sent to police custody or judicial custody. So if Ayodhya police will ask for police custody, court may approve the police custody through the all accused. But there are chances that they may be sent to judicial custody till police can investigate some further things. So it's up to the court that whether all accused will be sent to police custody or judicial custody. Today, CM Yogi Adityanath, he also said that the opposition were blaming that no action is being taken in this case. But he clearly said that just wait for the SIT report, and after receiving SIT report, CM Yogi Adityanath said that I have instructed to take strict action in this case, and yesterday FIR has been lodged and all 8 accused are in police custody now.
0: All right, Ranveer, they're reporting from the court where the 8 accused have now been produced. We're tracking all the developments in this entire case. Remember, politics also taking place over this entire issue. You have Akhilesh Yadav hitting out over the accusations in the Ram Temple case and saying that a UP-appointed SIT is not enough, saying that this is just small fish who have been caught. Also, Sanjay Raut of the UBT Shiv Sena has claimed that 1 crore was donated earlier by Uddhav Thackeray, and that 4 kilos of silver were also given in, and he's questioned that, saying no receipt was given at the time.
9: श्री राम का जो मंदिर है, ये डकैत लोग, चोर लोग जो लूट लिए मंदिर को, अभी भी मुझे लग रहा है. अच्छा, ड्राइवर को, मुंशी को पकड़ करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ड्राइवर, मुंशी को, छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके अब आप उसके ऊपर में FIR करके और इसको रफा दफा करना चाहते हैं? लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इसको रफा दफा नहीं होने देंगे हम. चंपत राय कहां हट गए उसमें से? उनका नाम ही नहीं है FIR में. उनके ड्राइवर का नाम रामचंद्र कोई है. मैं ये कह रहा हूं कि SIT गठित किए, FIR बाद में हुआ, मतलब वहां का जो शुरुआती दौड़े वाला जो वो प्रशासन है वो तो फेल है, यही ना माना जाएगा. अभी देखते रहिए, जो बड़े मछलियां हैं ना, अभी जांच होने दीजिए. ये चंपत राय बच नहीं सकते हैं. अगर उनका ड्राइवर का हाथ है तो पक्का है कि इनका भी हाथ होगा।
12: ड्राइवर, रसोइये, माली, यही पकड़े जाएंगे बेचारे, और क्या होगा।

0: लोगों को समझ में आ रहा है ये जो खुली डकैती हो रही है, ये सब समझ रहे हैं और राम जी नाराज हैं इसीलिए सब परतें खुल रही हैं। भगवान की नाराजगी नहीं झेल पाएंगे आप। कब तक मुसलमानों को पीट करके या मुसलमानों को दबा करके देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर पाओगे? आपने SIT बनाई थी, कहाँ है उसकी रिपोर्ट?
1: वो तो सबमिट कर दी सरकार ने। सरकार
0: तो फिर FIR क्यों नहीं हुई? FIR ट्रस्ट क्यों करा रहा है? और ट्रस्ट को ही FIR करानी थी तो पहले क्यों नहीं कराई? ये सवाल तो खड़े होंगे ना। जब कोई गड़बड़ होती है ना, समझ में नहीं आता। ये बौखलाहट में, जल्दबाजी में जो काम हो रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भगवान नाराज़ हैं तो भगवान की नाराजगी झेल पाना बहुत मुश्किल काम होगा।
2: All right, with that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, we'll get to the latest in the Pune murder case. Chief Minister Devendra Fadnavis promises to fast-track the case, and Ujjwal Nikam is appointed as the special public prosecutor.

0: के माँ बाप यानी प्रवीण जी और पूजा जी, ये एक हॉस्पिटल के रूम से हमारे साथ हैं। मैंने अभी भी एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, लेकिन एक सवाल मैं वापस, या एक सवाल बार बार मेरे तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे। पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है, और एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है। आपको क्या लगता है इसमें, जो जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ, या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए?
1: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
0: सख्त से सख्त मतलब क्या?
1: सख्त से सख्त फांसी की सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा,
0: और
1: फांसी की सज़ा कड़ी
0: कल
1: से
0: अगर ये
1: कड़ी
0: अदालत में
1: सज़ा,
0: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
1: तो उसे भी फांसी की सज़ा दीजिए, मैं तो बोलूँगा।
0: आप होशो हवास

0: against several high-profile individuals in its initial report. The accused who are arrested are identified as Teenu Yadav. There are 8 people who have been arrested. We're taking out their names right now. First up, Teenu Yadav. Second, Lavkush Mishra. Anukad Mishra, Avinash Shukla, Manish Yadav, Ramashankar Mishra. Out of all these 8 arrested, one of them is Ramashankar Yadav, also known as Teenu Yadav, who is considered to be a close aide of Champat Rai. And we just broke that news, how Teenu Yadav had access to the donation room. He had those keys. Meanwhile, UPCM Yogi Adityanath has issued action against all the accused involved in the case. He said that we will ensure the absolute truth comes to light, even as the opposition claims those arrested are the small fish in the case and that crores have been siphoned off.
1: मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था. मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है. अयोध्या पर आक्षेप मत करो. प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है. एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी. और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई. और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे.
2: देखिए, नैतिकता की बात करना तो बेकार है. अगर इनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देना था तो पहले दिन दे देना चाहिए था. अब जब तमाम लोगों के फोटो और वीडियोस आने लगे हैं जिन्होंने चंपत राय को सोने चांदी की चीजें भेंट किया, और वो लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि उनको रसीद तक नहीं दी गई, उनको उनकी फोटो नहीं भेजी गई जो कहा गया था, और ये कहा गया कि चांदी सो गला दिया गया. अब उनकी जब छीछा निधर होने लगी और चारों तरफ से आरोपों में घिर गया आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, तो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को बचाने के लिए ये इस्तीफे का अब नाटक हो रहा है. इसका कोई अर्थ नहीं है, और इस्तीफे के नाम पर भी उनको बचना नहीं चाहिए. अगर उन्होंने गबन किया है, घपला किया है, चोरी की है, डकैती डाली है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए.
3: कि आप मांग कर रहे हैं, क्योंकि 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, पर यह भी याद रखना जरूरी है कि जो एफआईआर है उसमें चंपत राय जी का नाम नहीं है. उन्होंने नैतिक आधार पर अभी अपना इस्तीफा दिया है. ही हैज टेकन अ मॉरल डिसीजन ऑन मॉरल ग्राउंड्स, ही हैज रिजाइंड
2: कंप्लीट. एक बात याद रखिए कि 100, 200, 400 करोड़ की, 1000 करोड़ की चोरी नौकर और ड्राइवर नहीं कर सकते हैं. वो चोरी बड़े लोग ही कर सकते हैं, और उनमें बड़े लोगों का ही हाथ होगा. नौकर ड्राइवर को बलि का बरका बकरा बनाया जाता है, और वही कोशिश यहाँ पर हो रही है.
4: सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा चंपत राय जी के. पहले तो सारे जब सब तथ्य सबूत सामने हैं तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ट्रस्ट के सारे लोगों को हटाया जाना चाहिए. और कांग्रेस की शुरू से मांग है कि एक सीबीआई ईडी से अदालत के देखरेख में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. प्रकरण बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा है, और करोड़ों करोड़ों सनातनी आस्था का विषय भी है. तो इसमें पारदर्शिता, विश्वसनीयता उपजे, ऐसी काम होनी चाहिए. सिर्फ एक इस्तीफे से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है भ्रष्टाचार की. जब से ये ट्रस्ट बना है तब से शुरू में भी बताया गया कि ये एक जांच एजेंसी ने, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी ने उसका ऑडिट किया, बताया कि इस तरह से इसमें गलतियां, इसको ठीक किया जाना चाहिए. कुछ नहीं हुआ. जब जमीनों का शुरू में घोटाला क्या आया तो भी एसआईटी बनी, उसने रिपोर्ट कर दी. क्या हुआ, भारत सरकार की सीएजी ने भी घोटाले की बात कही. बड़ी सारा ट्रस्ट भंग करें, मामला सीबीआई को दें, अदालत की देख रेख में ये जांच हो.
5: मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है?
6: वो सब फंसाया गया और कह रहा है, फंसाया गया और कह रहा है.
5: मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे?
6: मनीष को भी 1 महीना काम करे हुआ है.
5: बस
6: बस,
5: आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना?
6: रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं, बताइए.
5: अच्छा, पड़ोस मतलब रिश्तेदार नहीं है?
7: भाई के बेटे.
5: अच्छा अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए. और क्या वहाँ काम क्या था?
6: काम काउंटिंग का ही था. 1 ही महीना हुआ था, बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ देखे, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं.
5: अपॉइंटमेंट किसने कराया था?
6: अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे
5: बैंक की तरफ से.
6: जी,
5: टिनू की भूमिका

0: रही थी?
1: नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी।
0: अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की?
1: मनीष की उम्र अभी 20 साल।
0: 20 बस? अच्छा, तो इसमें सिर्फ एक महीना हुआ? क्योंकि
1: सिर्फ एक महीना, यही केवल जो है मई में काम किया बस।
0: मई में
1: बस?
0: अच्छा, उसके पहले वो?
1: उसके पहले कुछ नहीं करता था।
0: पढ़ाई
1: करते थे।
0: कहाँ?
1: अभी भी उसकी पढ़ाई चल रही है साकेत से।
0: साकेत से क्या कर रहा है?
1: बीए।
0: ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं।
1: ऐसा कुछ नहीं है।
0: अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब
1: ये सब फंसाया गया और क्या भैया?
0: इसकी वजह क्या है? क्योंकि 8 लोग का ही नाम है और इसमें
1: अरे जो बड़ी मछलियाँ उनको नहीं लिया गया, छोटे को लोग को फंसा।
0: बड़ी मछली कौन है?
1: अरे हम नाम नहीं जानते भैया, हमको उसमें काम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम लोग तो काम अपना अपना देखते हैं ना। तो
2: योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी, उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
3: राम मंदिर चोरी के आरोप में जो लोग भी अभियुक्त हैं, तत्परता के साथ वहाँ शासन काम कर रही है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उचित कदम है।
4: All right, the opposition has now trained gun on the BJP government over the theft case in Ram Mandir. UBT MP Shiv Sena Sanjay Raut has claimed that 4 kg silver brick was donated along with 1 crore rupees by UBT chief Uddhav Thackeray. But Ram Mandir Trust has never given them receipt of donations. He also urged for strict action in this matter. Meanwhile, Akhilesh Yadav has accused the probe of shielding the big fish, alleging that this is a cover-up under the pretext of an SIT probe.
5: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे-छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी FIR, फर्जी SIT, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महा डकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है।
6: दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखे इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है।
4: Shifting our focus to other big news now, marking the International Day Against Drug Abuse, Tamil Nadu Chief Minister Vijay flagged off a massive anti-drug awareness run. along Chennai's Marina Beach. That's before surprising hundreds of participants by joining them for the run this morning, reinforcing Tamil Nadu government's commitment to building a drug-free society and spreading awareness of rather dangers about substance abuse. The marathon brought together students, youth government officials, athletes and members of the public in a united effort to promote a healthier and safer future for the state. Vijay's government has always maintained a hard stance on drug use. In fact, the Vijay-led government introduced a comprehensive 7-point anti-drug action plan aimed at dismantling narcotics networks and reducing drug consumption among the youth.
7: The modelers in Sulringle, other NS and Jewish to Perking, Wuru Wuruvudama, Wuru Teruvudama, Bode Purla Kalachar, Abdi Spreda, Kutti Kadagi. அது அப்பவே இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இத்தனை பெண் குழந்தைகளை இத்தனை பெண்களை இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்குமா? எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பழியை தூக்கி ஏன் மேலே போடுறாங்க?
4: All right, shifting our focus now to other big news. 5 Indian Army personnel and 1 belonging to the Air Force were among 6 killed in line of action during Operation Sindoor, India's military response to the Pehelgam massacre against Pakistan in May last year. Well, this is the first time since the operation that the government has now released the names of 6 military personnel. The names of these soldiers will be inscribed at the National War Memorial in the national capital. And the names are Subedar Major Pavan Kumar, Rifleman Sunil Kumar, Lance Naik Dinesh Kumar, Agniveer Murali Naik, Havaldar Sunil Kumar Singh and Indian Air Force Sergeant Surendra Kumar. They were among those who sacrificed their lives for India and were killed in the line of duty. Meanwhile, a misconduct allegation has surfaced against a police personnel in Gurugram after video showing a heated dispute between a policeman and an auto rickshaw driver which spread widely on social media. According to the clip, which has now been viewed by thousands of users online, the police personnel boarded the auto rickshaw and asked the driver to take him to his destination without paying any money. The auto driver refused, explaining that he had already accepted a ride request through a booking app and that this could not, that he could not abandon his existing passenger for a free trip. Take a look.
8: ले 2 मिनट लगेगी, इतनी देर में छोड़ के आ जाएगा.
9: सर काम कर रहे हैं ना, अभी फ्री नहीं है ना, फ्री होते छोड़ देना आपको. सर ऐसे गाली क्यों दे रहे हो आप?
8: अरे सारा दिन तो
9: मैं
8: छोड़ लग रहे
9: थे, 2
8: मिनट लगे
9: हैं आगे चौक पर छोड़ दिया. अभी रूम से निकले हैं, गाली मत दीजिए सर. देख लिए ना आप लोग, फ्री के लाल है, फ्री में छोड़ने वाले हैं सब. ना छोड़ो तो गाली दे रहा है.
4: Slipping into a very short break, come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: NDTV टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज रीच फॉर द सिक्स्थ ईयर इन अ रो। Audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
6: This location from Tel Aviv
5: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
7: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
8: The Ayatollah Khamenei is gone.
9: There has been a missile attack right behind you.
10: And we need to rush into a shelter.
11: Heading there.
12: Will Prime Minister KP Sharma Oli

0: फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी
1: दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखे इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है।
2: चंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ भाई, मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं। चंपत राय चोर है, चोर है, इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो मैदान से भागे हैं। बड़ा लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है। उन निश्चित तौर से उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं।
3: We're joined by Alok Kumar, Working President of the Vishwa Hindu Parishad. Thank you, Alok ji, for joining us. How do you see what is panning out in the Ram Temple issue? First, the allegations and the arrests and now the resignations. Has there been a major lapse somewhere?
4: I think there is a major lapse. I think that the things are amiss. We are all sorry that this has happened. And I am sure that the police would investigate the matter in all its aspects.
3: Fair enough. Do you think that there needs to be more scrutiny or oversight of temples, especially from the government?
4: Why from the government side? We have a very bad experience of the temple governance by the government. I believe that there should be a better arrangement by experienced people, senior people who have been in the job of administration. The operating procedures should be prescribed and adhered to. The gadgets, the equipments and other things should be in place to ensure that every single rupee donated to Ramji remains safe and accounted for.
3: Okay. Right, that's a valid point. Alokji, many people say that this has left, devotees very anxious. All of us have had family members who have been rushing to Ayodhya. They love, the temple there, the idea of the temple. It's come about after several years of, struggle is what the Hindu community believes. The temple has been a matter of faith for many people. Do you think that this controversy will also impact the way people look at this temple?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: का राजा आर्द्र मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: Saathi haath badhana saathi re Jindal saathi seal saathi re।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आग प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
8: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
7: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI/UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा
3: सबका राजा आग और मसाला। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर। जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस India's leading producer of stainless steel.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create

0: which will the person be punished, and for future system be evolved so that it may not happen in future. I'm concerned with this. We have fought for 500 years. I myself have been with this movement from 1986 to 2019 continuously. And it was a dream. In a lifetime, we may see a glorious temple of Ram Lalaji at the place. That has come true. Now it is unfortunate and very unfortunate that this type of disappear has happened. It may be administrative lapses.
1: Now, while the probe is on one side, politics over the matter is only escalating by the minute. Opposition has trained guns at the BJP government over the theft case in Ram Mandir. UBT, Congress, Aam Aadmi Party, in fact, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal is in Ayodhya currently, camping and asking several questions to the UP government. Congress, Samajwadi Party are also joining hand. It's like the India bloc has come together to ask questions about where is the looted money of devotees. And why did BJP fail to secure the Aastha of devotees? That's not just one devotee, but lakhs and lakhs of devotees who are waiting till four decades and for after 400 years, they finally got the glimpse of Ram Lala and finally got the chance to offer their hard-earned money savings in offerings. But the Yogi government has once and for all cleared that the government is not leaving any stone unturned when it comes to the probe in the case, and every offender will be apprehended and justice will be served. Sample the reactions.
2: Istifa to usi samay de dena chahiye tha jab ghapla ho raha tha. Ye koi simple mamla nahi, ye bahut bada mamla hai. ये कोई एक राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है. ये कोई हजार दो हजार दस लाख पाँच लाख लोगों की भावनाओं से नहीं जुड़ा है, आस्थाओं से नहीं जुड़ा है. इस देश के करोड़ों करोड़ों करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं से और उनके धर्म से जुड़ा हुआ है और इसकी बड़े पैमाने पर लूट हुई है.
3: ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में आठ छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया. कोई बड़े नाम नहीं है. तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है. ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है. भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है. भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है. और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं. जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है.
4: दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया. आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखे इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम.

0: see. Earlier temple of Ram Lalaji at the place. That has come true. Now it is unfortunate and very unfortunate that this type of disappear has happened. It is maybe administrative lapses.
1: Now, while the probe is on one side, politics over the matter is only escalating by the minute. Opposition has trained guns at the BJP government over the theft case in Ram Mandir. UBT, Congress, Aam Aadmi Party, in fact, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal is in Ayodhya currently, camping and asking several questions to the UP government. Congress, Samajwadi Party are also joining hand. It's like the India bloc has come together to ask questions about where is the looted money of devotees. And why did BJP fail to secure the Aastha of devotees? That's not just one devotee, but lakhs and lakhs of devotees who are waiting till four decades and after 400 years, they finally got the glimpse of Ram Lala and finally got the chance to offer their hard-earned money savings in offerings. But the Yogi government has once and for all cleared that the government is not leaving any stone unturned when it comes to the probe in the case, and every offender will be apprehended and justice will be served. Sample the reactions.
2: Istifa to usi samay de dena chahiye tha jab ghapla ho raha tha. Ye koi simple mamla nahi, ye bahut bada mamla hai. ये कोई एक राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, यह राष्ट्र से जुड़ा हुआ है. ये कोई हजार दो हजार दस लाख पाँच लाख लोगों की भावनाओं से नहीं जुड़ा है, आस्थाओं से नहीं जुड़ा है. इस देश के करोड़ों करोड़ों करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं से और उनके धर्म से जुड़ा हुआ है और इसकी बड़े पैमाने पर लूट हुई है.
3: ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में आठ छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया. कोई बड़े नाम नहीं है. तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है. ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है. भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है. भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है. और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं. जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है.
4: दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया. आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखें इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है.
5: जनपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया. अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ भाई. मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं. चंपत राय चोर है, चोर है. इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज मैदान

0: judges, please. These are original documents.
1: Okay, Amitosh Parikh, Amitosh Parikh answer.
2: Padmaja, Padmaja, 2 days back.
0: नहीं आप गलत तरीके से defend कर रहे हो. आप मुझे समझा दो कि SIT report trust के पास नहीं आई और आप कह रहे हो कि उसके basis पे FIR हो गई. वाह भाई साहब, 18 दिन से किसने रोका हुआ था? गिरफ्तारी क्यों नहीं की? अरेस्ट क्यों नहीं की? जब बरामद की होगी.
2: Padmaja, can I respond to gentleman inquiry?
0: You
2: keep your anger with you, sir.
0: Yadav and all these recoveries have been made of crores. Then why weren't they arrested for last 18 days? Why was the government waiting? Why was Yogi government waiting for 18 days? ये तो बुलडोजर चला देते हैं. अब क्या इंतजार कर रहे हैं?
1: Okay, Amitosh Parikh, Amitosh Parikh. Yes.
0: And when this prime of SI evidence, even before the registration of FIR, you form an SIT. ये गजब लॉ है. बिना FIR के आप SIT बना रहे हो.
1: विवेक जी कुछ बोलिए. ये यूपी चुनाव में सब कुछ आम आदमी पार्टी ले जाएगी. क्या कर रहे हो? छोड़ दो.
3: मैं एक उदाहरण और दूंगा पद्माजी जी. हाँ। 5 सेकंड के अंदर
1: बोले बोले 5 सेकंड.
3: चरण सिंह से जब पूछा गया. हाँ। इतना बड़ा बाहुबली जिसका हाँ। भारत सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई. वो हमारी जो पहलवान लड़कियां थी, कितनी डिबेट हमारी आपकी हुई. ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, भैया हमसे मत बुलवाओ, बहुत बड़े लोग हैं, मेरी हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ कहने के लिए.
1: सो नाउ यू आल्सो टेक ब्रिजभूषण शरण सिंह एज द गॉस्पेल. ओके आंसर. सो लेट्स गेट बैक टू सीरियस.
3: मेरी हिम्मत नहीं है.
1: ओके straight question.
0: SIT is an eye watch formed to protect influential people.
3: Exactly.
0: Yesterday when Prime Minister of our country asked Champat Rai ke batao wo hazaron crore ka chadhawa kahan hai, usne kaha main nahi bataunga.
1: Okay, Amitabh.
0: Kaun hai bhai Champat Rai?
1: Let him come.
0: Kaun bacha raha hai use?
1: Okay, let him come.
0: Se bada ho gaya Champat Rai.
1: SIT is an eye watch. SIT is an eye watch. Let me go to Radhika Khera.
0: Rasta pe chot pahunchi
2: hai.
0: Easy to ho jata agar FIR kara dete, giraftari kar dete.
1: Amitabh Parikh.
2: Padmaja, 2 days back,
0: Mr. Chadhawa chori kar rahe hain aur easy easy bata rahe hain.
2: Padmaja, 2 days back.
0: Dakaiti, haan, sorry, dakaiti. Maha dakaiti.
2: 2 days back, Mr. Anmol has contacted me. And ask for certain.
0: Contacted me?
2: Exactly, that's what I was talking. When allegations made out there, they ask for evidence.
0: And
2: they are ready here.
0: Where are evidence? Where are evidence? Where are evidence? Where are the registry?
1: Okay.
0: See the registry.
1: आम आदमी पार्टी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं आजकल. हर कोई आपका फोन जो है कोट कर दे रहा है. एक सेकंड. ओके, कम बैक टू द पॉइंट. Why should you? No, okay, okay, okay. Wait a second. Please let's come back to the topic. Let's come back to the topic. I think important questions. Anmol power.
0: क्यों नहीं दिखाते?
1: Anmol power.
0: 2 crore की ज़मीन 18 crore में, 9 crore की 55 crore में.
1: Power, if you keep shouting,
0: Mr. Power. आप ये दिखा नहीं रहे उन्हें? क्यों नहीं दिखा रहे?
1: You know, Mr. Power. Mr. Power.
0: दिखाओ उन्हें.
1: Mr. Power, if you keep shouting, the real questions that need to be asked will not be heard.
0: Those are hurt.
1: You are giving an escape route. You are giving an escape route to the VHP and BJP by shouting at them.
0: महापापी महादकेट्स. Otherwise, show these registries.
2: Ye registry
1: by shouting incessantly, you are helping nobody's cause.
0: And by not showing these documents, you are helping these culprits.
1: I am asking a straight question to Anmol Power and Radhika Khera. Why should we trust this SIT? Why should we trust this SIT? Anmol Parikh, why should we trust this SIT?
0: वो किसी काम के नहीं है.
1: Okay, I'm going to have to cut to Radhika Khera. आशुतोष दे राधिका खेड़ा, why should we trust this SIT?
4: मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ. उम्मीद करती हूँ एक सिविल तरीके से बात करी जाएगी. यहाँ महापापी की बात हो रही थी. Now I want to ask the आम आदमी पार्टी spokesperson a very direct question and expose his double standards. They are giving us lectures on the Daan of Ram Lalla, where our government has already thrown the threes into jail who have been found till now, and we are going to ensure that not one is spared. But the Aam Aadmi Party, under the leadership of Shri Arvind Kejriwal, who himself has said that मैं IIT में पढ़ने के बाद नास्तिक हो चुका हूँ, and he also said कि एक दिन मेरी दादी मेरे या नानी मेरे सपने में आई और राम लल्ला का मंदिर यहाँ नहीं होना चाहिए था. खैर वो उनकी अपनी आस्था है. But where we are need to call this, they are happily protecting a Guru Dhoki in Punjab just to save their government.
0: False.
4: They have to answer.
0: That's false. Okay, these are lies. These are blatant lies.
1: Let's not digress.
0: I won't allow.
1: Stick to Ram Temple.
0: I won't allow to spread these lies.
4: This is not fair. You need to control this.
1: I will. Let's stick to Ram Temple, please.
0: Don't
1: yes.
0: spread lies.
4: No, this is very important. Because Guru ke saath dhoka.
0: अरे झूठ मत बोलो, तुम पकड़े गए हो.
1: Mr. Power, you are overwhelming the entire discussion. Please, people who are not in the studio, get a raw deal. Let Radhika and Ashutosh also speak, please. I will come back to you, sir. आप तो चुप नहीं रहेंगे ना. आपको मौका मिलेगा.
0: आपको
1: आपको मौका मिलेगा. ओके राधिका खेड़ा, कम बैक टू द टॉपिक प्लीज, अदरवाइज इट विल ओनली बी अ शाउटिंग.
4: जरूरी है.

0: UBT, Congress, Aam Aadmi Party. In fact, Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal is in Ayodhya currently camping and asking several questions to the UP government. Congress, Samajwadi Party are also joining hand. It's like the India bloc has come together to ask questions about where is the looted money of devotees. And why did BJP fail to secure the Aastha of devotees? That's not just one devotee, but lakhs and lakhs of devotees who are waiting till four decades, and for after 400 years, they finally got the glimpse of Ram Lala and finally got the chance to offer their hard-earned money savings in offerings. But the Yogi government has once and for all cleared that the government is not leaving any stone unturned when it comes to the probe in the case, and every offender will be apprehended and justice will be served. Sample the reactions.
1: इस्तीफा तो उसी समय दे देना चाहिए था जब घपला हो रहा था. ये कोई सिंपल मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है. ये कोई एक राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है. ये कोई हजार दो हजार दस लाख पाँच लाख लोगों की भावनाओं से नहीं जुड़ा है, आस्थाओं से नहीं जुड़ा है. इस देश के करोड़ों करोड़ों करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं से और उनके धर्म से जुड़ा हुआ है और इसकी बड़े पैमाने पर लूट हुई है.
2: ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में आठ छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया. कोई बड़े नाम नहीं है. तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है. ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है. भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है. भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है. और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं. जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है.
3: दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया. आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखे इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है.
4: जनपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया. अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ. भाई मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं. चंपत राय चोर है, चोर है. इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो मैदान से भागे हैं. बड़ा लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है. उन निश्चित तौर से वो उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं.
0: And bigger revelations are coming in the Ketan murder case. Sia's brother Sahil has been grilled by the police now, and Sia's brother's interrogation lasted for around 10 hours.

0: से जुड़ा हुआ है। ये कोई हजार दो हजार दस लाख पाँच लाख लोगों की भावनाओं से नहीं जुड़ा है, आस्थाओं से नहीं जुड़ा है, इस देश के करोड़ों करोड़ों करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं से और उनके धर्म से जुड़ा हुआ है और इसकी बड़े पैमाने पर लूट हुई है।
1: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी FIR, फर्जी SIT, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है।
2: दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखें इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है।
3: जनपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ भाई, मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं। चंपत राय चोर है, चोर है, इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो मैदान से भागे हैं। बड़ा लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है। उन निश्चित तौर से वो उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं।
4: And bigger revelations are coming in the Ketan murder case. Sia's brother Sahil has been grilled by the police now, and Sia's brother's interrogation lasted for around 10 hours. And the inside scoop of what the statement was given to the cops has been accessed by NDTV. As per sources, Sahil claimed that if Sia objected, they would have cancelled the wedding, highlighting or hinting towards the fact that maybe Sia didn't tell the family that she was unwilling to marry Ketan. My colleague Sujata, who has been on top of this news by the minute, is joining me. Sujata, tell us more about the statement that has been given by Sia's brother.
5: Well, yes, in the ongoing Ketan Agarwal murder case, we know that Pune's Lonavala Rural Police today has conducted an intensive 10-hour interrogation of Sahil Goyal, the brother of Goyal. The questioning began at around 11 a.m. in the morning and continued throughout the day. And according to sources, the investigators have thoroughly examined and recorded statement of Sahil Goyal, who earlier claimed that he was unaware of the unwillingness of Sia to marry Ketan Agarwal. Now, we know that Sahil is the person who got Sia and Chetan both in touch last November in 2025, and thereafter the relationship began.